हमन से भजलो रे हरी, तन से भजलो रे हरी, राम नाम है जग में।

उठा सा टुका नारद देखे करम की रेखा सात मन से भज लो रे हरी तन से भज लो रे हरी राम नाम है जग में।

अमर नाथ की अमर कहानी सब जग में हो गई हो सीता। ए मन से भज लो रे हरी, तन से भज लो रे हरी।

भजलू प्यारे।

भजन करो हरे जगत जगता।

0: संसार हरे जगत जगतार भजन करो।
1: सर से

0: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: कार्यक्रम शुभ कल सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा,
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। साथियों, कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है शुभ कल कार्यक्रम।
1: यह कार्यक्रम रेडियो बुंदेलखंड और लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है,
2: और ये श्रृंखला का 11वां कार्यक्रम आप लोगों के बीच हम लोग लेकर आए हैं। साथियों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत को कम होती ही है, इससे साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है, तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की इस स्पर्धा में जैविक उत्पादन अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे से होंगे। और साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने जाना था कि क्या कारण है कि लोग जैविक खेती क्यों नहीं करते हैं, वो आंकड़ों पर हमने एक नजर डाली थी। साथ साथ में हमने समुदाय से बात की थी, और विषय विशेषज्ञ द्वारा हमने जाना था कि लोग जैविक खेती करने में क्यों हिचकिचाते हैं। बहुत सारी बातें निकल के आई थी, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज बात करने जा रहे हैं कि जैविक खेती करने से हमें क्या लाभ है।
1: हमारे इन कार्यक्रमों के बनाने का उद्देश्य भी यही है, कैसे हमारे किसानों की दिशा और दशा में सुधार हो सके। इसके लिए हमारे किसान साथियों जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, खास तौर पर महिला किसान।
2: वर्षा, हमारे किसानों की दिशा और दशा तभी सुधरेगी जब हमारे किसान साथी जागरूक होंगे, और जागरूक तभी होंगे जब उनके पास उस विषय की अच्छी तरह से जानकारी हो, और जानकारी तभी होगी जब रेडियो बुंदेलखंड पर इन कार्यक्रमों को सुनेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम भी उन किसान साथियों के लिए बना रहे हैं, और खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो दिन रात अपने परिवार के साथ खेतों पर मेहनत करती हैं।
1: अरे मनीष भैया, इनको समझाने के लिए हमारी बैरो भौजी ही काफी है, क्योंकि उन्होंने अपने लालाजू को भी समझाया। आइए चलते हैं बैरो भौजी के पास।

0: लालाजू, ओ लालाजू।
1: हाँ भाजी, बता क्या बात है?
0: क्या बात है लालाजू, आप तो बड़ी आराम से बोल रहे।
1: ले भाजी, अब तक नेक आराम से बोलो, सो भाई बात।
0: क्या कह रहे हैं, कठिया के बोलो, सो भाई बात।
1: अरे भौजी, तनक हमने कही कि आज आराम से बतिया लिए, भौजी से वैसे तो लड़त रहता अपन।
0: अरे लालाजू, मैं जाके भी आई थी कि नेक तुम मे संगे चलू।
1: तुम्हारे संगे चलू?
0: हाँ।
1: काहे के लाने?
0: मैं हारे चलू नेक।
1: हारे चलू?
0: हाँ।
1: ऐसो कहते हारे कि हम हारे चले थे।
0: अरे लालाजू, मैं कह रही तो समझ लू, जरूरी काम है मुझे।
1: अरे भौजी, अब हम पढ़ रहे।
0: पढ़ रहे बाद में पढ़े लीजिए, आखने मुझे जरूरी काम है, वो हारे तुमसे मिल रहे हैं वो।
1: ऐसी क्या बात है, बता ही बता दे तो।
0: का कह रहे लालाजू, नहीं चल रहा है?
1: अरे जा कह रहा है भौजी, ऐसी क्या बात है।

0: यही बता दे हारे जावे की क्या जरूरत है।
1: अरे लालाजू अब तुम तो इतने पढ़े लिखे होंगे, नेक मोई का को तो अच्छी सी बता दू, नेक मैं का डाल लू ई खेतन में, मुझे तो समझ में नहीं आ रही, मैं जे दवाई ले आऊंगी लेकिन इनसे का को मुझे कुछ फायदा थोड़ी ना पड़ रहा है गो। और मैं सोच रही होंगी कि अगर तुम्हें कोई दवाई याद हो तो तुम बता दो।
0: भौजी देखो अब तुम हमसे तो ज्यादा जानते ही हो, काय में लगी हमारा ना के
1: भी। अरे लाला जी फिर भी मैंने कही तुम पढ़े लिखे होंगे तो मैं तुमसे पूछ लेती होंगी, तुम्हें कछु नहीं आऊंगा।
0: अरे आओ तो है ना, लेकिन अब मैं खेती बाड़ी में थोड़ी जाना थे एक बात है।
1: अच्छा तो मैं तुम्हारे चलो मैं तुम्हारी खेती देखी यार तुम्हारी कैसी है।
0: हाँ हमारी देखे, हम तो दवाई दीजिए अपनी ये चल रही है आजकल भी
1: दवाई देते ही।
0: चलो देखे यहाँ तो
1: चलो चलो तो पहले तुम्हारी खेती देखे आप फिर मैं अपनी देखूँ।

0: लाला जी मरवे जाने आ तो जा खेती ऊपर से प्राण खा रही।
1: मरवे नहीं पड़वे जाने आई पड़वे जाने आओ तो खेती भी करने संगे संगे देखो अब किसानी को गाँव गाड़ो को काम है तो सब करने आओ
0: तई। हाँ वो तो यह है की लाला जी मैं जा के रही तुम कहा डारा दिन में देखो तुझे भटन में कैसे कीड़ा मीरा सो लग रहा है वो और काकुती लग रहा है कहा डारा तुम।
1: अरे भौजी दवाई तो मैंने मुल्कन दी अपनी बाजार से लिया लिया गए।
0: लाला जी मैं तो जा से आई थी देखन मैंने कही कि तुम आई अच्छी हो जो उमदा को लाला जी अच्छी दवाई डाल रहा हूँ मैं जाई वहाँ ने लाला जी की फसल तो देखे कैसी का हैगी।
1: अरे भौजी तो ऐसी बातें कर रही तुम मेरे घर है बन नहीं दवाई अब मैं तो बाजार से लिया था तुम यानी क्या करा था जुम्मन मैं तुम्हारी देखे हूँ कैसी है तुम ज्यादा वो बता रही तो।
0: अरे चलो लाला जी तो तुम्हारी से तो अच्छी मेज चाहिएगी मैं तो जबकि देसी दवाई को इस्तेमाल करे थे मैं तो बड़े वहां से आई थी। अरे मेरे लाला जी की अच्छी उम्दा हो जाए काहे के भी पढ़े लिखे हैं अच्छी दवाई ले आते।
1: अरे भौजी अब दुकान पे मिल जाता अपनी ये सब चीजें तो फिर काहे को दिक्कत करो जैसे बढ़िया दवाई मिला सिसिंगन में दवाई नहीं मिला दुकान पे मशीन से किंच दू
0: रासायनिक
1: और
0: बाकी तुम
1: भाई तो लिया
0: इतनी अच्छी कही वो हर लगे ना फटकर ही रंग चोखो हो जाए।
1: भौजी तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे ते अपने घर ही बनाते हो दवाई।
0: हाँ उसमें तो बनाते ही हूँ मामे कहा सके वो
1: कहा घर है बना।
0: हाँ जो जैविक दवाई है वो तो मैं अपने घर बनाऊ तो और अपनी बैगन में और चाहे जो सी फसल हो मैं अपनी उनमें डालत होंगी।
1: कैसी काय को मस्करी कर रही भौजी
0: कहा कह रहे लाला जी काय को मस्करी कर रही तो मस्करी दिखा रही
1: और कही तो रही घर बना दवाई बना वो हंसी के लेगा।
0: हाँ लाला जी मैं इनसे उम्दा दवाई बनाते रासायनिक दवाई जिनसे मैं जैविक दवाई बहुत अच्छी बना लेती होंगी।
1: अब तो भौजी चला ही नहीं आए थे यार देखो
2: कैसी चलो तो देख लो मेरी फसल कैसी उम्दा लहलहा रही
0: और ना ये कहो कीड़ा लगो कीड़ा के लाने और जाना बहुत हो तो मैं मुझे तो विशेषक बुला लेते हैं तो उनसे पूछा की कैसी देसी दवाई कैसे बनाऊ मैं
1: है?
0: जो अपनी चीजें हैं प्राकृतिक ईंधन से कैसे दवाई बनाऊ।
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो अब तो चला ही नहीं आए तो हारे
0: चलो देखो अब देखो लाला जी जो तो लगो मेरे बैगन और जी अभी मैंने टमाटर की पौधे सुबह लगा दी
1: वो भौजी तेरी फसल तो सांसों देख भी लाखेगी।
0: कहा कह रहे भौजी तेरी फसल तो बड़ी उम्दा है
1: और मेरी फसल से तो बहुत ही उम्दा हैगी।
0: हाँ तो लाला जी मैं तो यही सोच रही थी कि तुम्हारी उम्दा हो जाए लेकिन मैं तो खुदा बड़ी खुश हो रही कि मेरी अच्छी हैगी मैं तो इतनी घरे बना था अपनी सब।
1: लेकिन भौजी जी भी टपज जाए भी मटका धरे जे का है धरे चार पाँच।
0: कहा कह रहे लाला जी टपज्जा में लोटा धरे
1: लोटा नहीं भी मटका धरे बट तू टपज्जा में।
0: हाओ लाला जी मैं मटकन से मैं मटका खाद बनाता हूँ।
1: मटका खाद
0: हाओ
1: बा कैसी बनाता
0: ले लाला जी तुम्हें जो ही पता नहीं है मैं अपनी सब देसी खाद डालता हूँ उनमें जिसे उनमें उर्वरक जो अपनी खेत की जो उर्वरक शक्ति है और नमी है वह हमेशा बनी रहते और पैदावार भी अच्छी होते।
1: हाओ मैंने पढ़ा तो है ना तो किताबन में मटका खाद जी सब जैविक खादे बने।
2: अच्छा
1: लेकिन तो मैंने जो सोची नहीं है कि खुद बना सका।
0: अरे वो तो है ही बना सकते हैं तो लाला जी अगली बार ध्यान करने कि दवाई घर ही बनाने और घर ही खाद बनाने उन्हीं को इस्तेमाल करने।
1: अब तो भौजी मैं तू जरूर सीख भी आऊँ जी दवाई बना
0: बिल्कुल तो आज जो ट्रेनिंग लेवे के लाने।

0: साथियों, सुना आपने बैरू भौजी को, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बताया कि अगर हमारे खेतों में कोई भी समस्या होती है तो उसके निजात पाने के लिए हम रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल ना करके घर से बनी हुई जो खाद होती है, जो दवाई होती है, जो हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं, उनको हम अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बेहतर पैदावार पैदा कर सकते हैं।
1: बैरू भौजी ने कितने अच्छी तरीके से जैविक खेती के बारे में बड़े अच्छी तरीके से समझाया और जो भी गिला शिकवा थे वो भी हमें दूर हुए। लेकिन हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ तक बैरू भौजी तक सवाल सीमित नहीं है, यहाँ पर सवाल आते हैं हमारे किसान साथियों के, क्योंकि किसान साथी जैविक खेती इस बुंदेलखंड क्षेत्र में क्यों नहीं करते हैं, उनके पास आपको ले चलते हैं, उनसे जानते हैं। क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि किसान अपने खेती की लागत इतनी ज्यादा लगाता है और उसके लिए कर्ज करता है, कर्ज होने के बाद साथ साथ में आज हम बैंकों की स्थिति देखते हैं तब पता चलता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो डिफॉल्टर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लागत भी नहीं निकलती है पूरे साल भर खेती करने के बाद। तो ये सारी पीड़ाओं को हम दूर करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जैविक की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। लेकिन अब सबसे पहले हम अपने किसान साथियों के पास आपको ले चलते हैं और जानते हैं

0: कि जैविक खेती क्या है, लेकिन कुछ विराम के बाद।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे दोस्त आराधना और बात करेंगे आज जैविक खेती क्या है। ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशियों व खरपतवार नाशियों तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग ना करते हुए जीवाश्म युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है तथा मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है, उसे जैविक खेती कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।
2: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
3: ब्रजनंदन पाल कैना से।
4: ब्रजनंदन जी, आपने जैविक खेती के बारे में तो सुना होगा, तो जैविक खेती से लाभ क्या है?
3: जैविक खेती से लाभ यही है कि मतलब कुछ इनकम ज्यादा आती है उसमें, अपन को फायदा। जैसे मूंगफली है, मूंगफली उखाड़ी उसको तोड़ा बेचने के कंपनी, तो इसी के बारे में थोड़ी।
4: अच्छा, तो आपको कुल मिला के ज्यादा मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि जैविक खेती करके अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं?
3: नहीं कर सकते।
4: चलिए, और आय को हम बढ़ा सकते हैं?
3: आय देखो, महंगाई तो बढ़ रही है, जमीन के ऊपर है, ऐसी तो थोड़ी ना बढ़ेगी। कुछ अलग तरीके की खेती करें तभी तो आय बढ़ेगी।
4: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए।
3: सुरेंद्र पाल कहना।
4: अच्छा सुरेंद्र पाल जी, आप जैविक खेती के बारे में जानते होंगे, तो जैविक खेती से लाभ क्या है आपके हिसाब से, क्या लगता है लाभ क्या है?
3: हाल की स्थिति में तो जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गए, उड़द हो गए, चना हो गए, जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गई, सोयाबीन हो गया, उड़दा हो गया, मूंग हो गई,
4: ये जैविक खेती के उत्पादन।
3: हाँ, तो ये उत्पादन है, तो अगर इससे तो ये है, अगर मान लो 2-4 बीघा जमीन है किसी के पास, तो इस चीज से कोई लाभ नहीं है।
4: अच्छा, जैविक खेती करके हम अपनी खेती की लागत को कम कर सकते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है?
3: अपने हिसाब से ये है कि जैसे वो अपने हाथ में तो है नहीं, अगर बरसात सही तरीके से अगर हो गई तो अपन लाभ ले सकते हैं। अगर बरसात नहीं हुई, किसी के कुएं में पानी नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, मान लो हम या आप ही हो गए कि भगवान के भरोसे रहते, अगर अभी पानी खुल गया तो मूंगफली में कुछ नहीं है, अगर बरस गया तो सब।
4: एक वर्ष आखिरी सवाल है कि जैविक खेती करके हम अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से, चूंकि आप खेती करते हैं?
3: खेती करके मान लो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं कि अगर कुआ अंदर पानी है तो टाइम से बो दिया, टाइम से पानी दे दिया और टाइम से खाद बीज लगा दिए तो अच्छी फसल उपजाऊगी, तो अपन उससे लाभ ले सकते हैं।
4: चलिए, बहुत अच्छा लगा लाला राम जी आपसे बात करके, धन्यवाद।
5: हमारा नाम है रईस यादव, लुधौरा निवाड़ी विधानसभा से बोल रहे हैं।
4: अच्छा रईस जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जैविक खेती जो होती है उससे करने से क्या लाभ है?
5: उसे ये लाभ है कि सबसे जल्दी पौधा अपना होता है, जो जो भटा है, टमाटर है, आलू है, जल्दी तैयार हो जाते हैं उससे। अच्छा, जो गोबर खाद सा है, गोबर खाद का मतलब जैविक खाद में थोड़ा मतलब बीमारी टाइप का तत्व रहता है, इसमें निर्दोखल रहता है मतलब गोबर खाद।
4: अच्छा,
5: इससे आदमी बीमार कम पड़ते हैं।
4: अच्छा, आपको रही जी क्या लगता है कि जैविक खेती करके खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं आपके हिसाब से?
5: धीरे धीरे होगा, तो जैसे अपन को थोड़ी मात्रा में कम खाद दो इस साल, फिर पर साल अगले कम दो, और जब गोबर जो मान है गौ माता का, ये ज्यादा मात्रा में देते जाओ, इसके बाद जो जैविक खाद देना बंद हो जाता है और फसल होने लगती है फिर।
4: अच्छा, जैविक खेती करके अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं क्या, आपके हिसाब से क्या लगता है?
5: हाँ, जैविक मतलब खाद से बढ़ती है आय
4: बढ़ती है। कैसे बढ़ती है?
5: मतलब ऐसे है की जैविक खाद अच्छी जैसी मात्रा में हर गुड़ाई जो खाद छिड़कते हो अपन,
4: अच्छा
5: पानी देते रहो, बढ़िया फल फूल, बढ़िया टुकड़ाई चलेगी उसकी।
4: धन्यवाद।
6: ब्रज किशोर कुशवाहा।
4: अच्छा ब्रज किशोर, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं, जो जैविक खेती होती है आपके हिसाब से उससे को करने से क्या लाभ है?
6: हमें पता नहीं है,
4: जानकारी नहीं है जैविक खेती की?
6: नहीं है जानकारी।
4: अच्छा, जैविक खेती करके लागत को कम कर सकते हैं अपन लोग?
6: अब जी हमें पता नहीं है सर।
4: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
1: साथियों, अभी आपने सुना कुछ किसानों की बातचीत को, जिनकी बातों से बिल्कुल पता चल रहा था कि कुछ किसान साथी हमारे ऐसे हैं जिनको जैविक खेती के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर

0: जैविक खेती क्या होती है, लेकिन कुछ किसान साथी ऐसे हैं जिनको पता तो है कि जैविक खेती क्या होती है लेकिन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैविक को करने से हमारी फसल सही नहीं होगी या हमारी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी। उनके अपने मन में जो भ्रांतियां चल रही थी, आइए इन्हीं सब बातों को लेकर हम आपको सीधा ले चलते हैं विषय विशेषज्ञ के पास, लेकिन एक गीत सुनने के बाद
1: जी।

खुशहाली अपनी भूमि रे खुशहाली सुमाला है माला ओ माला माल कर देती जा जैविक खेती माला माल कर देती जा जैविक खेती।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और साथियों, आप अभी आपने कृषि से जुड़ा इस गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सीधा ले चलते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ के पास और जानते हैं जैविक खेती के उन सारे किसानों के जो सवाल थे, उन सवालों के जवाबों को।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
0: का सर मानना क्या है कि किसानों को जैविक खेती, अगर इस क्षेत्र में देखा जाए सर, मध्य प्रदेश में कुछ हिस्से ऐसे जहाँ पर लोग जैविक खेती करना ही नहीं चाहते, जब हम किसानों से बात करी वो नहीं करना चाहते हैं, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, एक बहुत वैसी बात हम आपको बता रहे हैं कि भारत ही नहीं पूरा विश्व आने वाले समय में जो खाद्यान्न संकट से गुजरने वाला है। 2050 तक पूरे विश्व की आबादी लगभग 10 अरब हो जाएगी, उसमें भारत की आबादी लगभग 1 अरब 70 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने होगी कि हमको उत्पादन शक्ति बढ़ाना होगा और ताकि हम सभी लोगों को खाना उपलब्ध करा सकें। और जहां तक इस कृषि पद्धति की बात है तो इसे तो अपनाना ही होगा, और इसके लिए उन्हें सहजता से उनके साथ संपर्क करके जो विशेषज्ञ लोग होंगे, कृषि विशेषज्ञ लोग होंगे, और उनसे मिलना होगा और उनको इसके जो फायदे हैं वो बताना होगा। तो जो अस्थायी कृषि है, आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, क्योंकि इसका इसके कई नाम से जानते हैं जाना जाता है, जैसे सतत खेती, पोषणीय खेती, प्राकृतिक खेती, परमा कल्चर, तो इसमें ये सेट ही है एक तरह से, आप देखिए ये पद्धति का सेट है, तो जो कि 3-4 शर्तों को पूरा करता है कि पर्यावरण का सम्मान करेगा, ये सम्मान होगा इसमें, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो जाएगी, किसानों का उचित और पर्याप्त आय भी सुनिश्चित होगा इसमें।
0: बिल्कुल।
2: और चूंकि वर्तमान में भू स्तर, जो जल का स्तर है वो गिरता जा रहा, ऑर्गेनिक कार्बन की भी मात्रा कम होती जा रही है, और भारत की जो कृषि पद्धति है या खेती हो रही है उसमें हमेशा से नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो कमी है वो हमेशा से रही है, तो इसकी पूर्ति करने के लिए लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके विकल्प के तौर पे उन्हें प्राकृतिक खेती, ये अस्थाई कृषि अपनानी होगी और उसके फायदे उनको दिखेंगे। और चूंकि तुरंत उसका फायदा नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद निरंतर वो 3-4 साल तक अगर उसको प्रैक्टिस में ले आएंगे फिर उसको उनका फायदा दिखने लगेगा।
0: सर आपका मानना क्या है कि जब हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर रासायनिक खेती की बात करते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है आपके हिसाब से?
2: जी देखिए, रासायनिक खेती, तो रासायनिक खेती में हमेशा जो संश्लेषित या कह सकते हैं हमेशा रसायनों का प्रयोग करके जो खाद बनाई जाती है और कीटनाशक बनाए जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, उनके प्रयोग से आप अंततः देखिए मनुष्य को ही नुकसान हो रहा है। आप बहुत सामान्य तरीके से इसको समझा जा सकता है कि जो यूरिया, डीएपी, एमओपी, ये सारे जो रासायनिक खाद है उनको डाला जा रहा खेत में, हर साल हर फसल के दौरान डाला जा रहा है, तो वो धीरे धीरे उसकी जो अन्य जो नकारात्मक तत्व है उसमें वो मिट्टी में बढ़ते चले जाते हैं। और जब कोई पौधा हम लगाते हैं, खेती करते हैं, तो उस पौधे की जड़ में, उसके तने में, उसके फल में, उसके फूल में, सभी में वो अवशोषित हो जाता है, और उसके बाद जब हम उसको, अगर कोई जानवर भी उसको खाता है और उसके शरीर में जाता है, उसका दूध हम पीते हैं, तो उसमें भी जो नुकसानदायक पदार्थ होते हैं वो हमें मिलते, हमारे शरीर में आ जाता है। हम डायरेक्ट जब सीधे तौर पे हम लोग उसका उपभोग करते हैं तो हमारे शरीर में वो नुकसानदायक पदार्थ आ जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे इन तत्वों का सांद्रण हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे जो जैसे कुछ भारी धातुएं हैं, पानी, मृदा, वायु, सभी प्रदूषित होते चले जा रहे हैं इन कीटनाशकों और रासायनिक पदार्थों के अंधाधुंध प्रयोग से। इस तरह से जो सांद्रण बढ़ता है, चूंकि वो पता नहीं चलता है, लेकिन ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है खाना पीना, तो ऐसे में हमारे शरीर में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। इसको हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, एक वैज्ञानिक टर्म है, तो इसमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो धीरे धीरे शरीर में एक स्तर तक पहुंच जाता है, और जब एक स्तर से ऊपर हो जाता है तो उससे नकारात्मक प्रभाव उसके दिखने लगते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। जो इस समय आपको समाज में बहुत आसानी से दिख जा रहा है, सभी लोग किसी न किसी समस्या से ग्रसित होते चले जा रहे हैं खान पान की वजह से।
0: जी अगर सर, अगर फायदे की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो सर इसका जैविक खेती का फायदा क्या है, क्योंकि अभी अभी रासायनिक जो हम लोग खाद डालते हैं उसका हमने नुकसान बताया है, फायदा क्या है जैविक खेती का?
3: जी, इसके अनेक लाभ हैं और उसमें सबसे पहले आप ये देखा जाएगा कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाएगी
0: जी,
3: उसमें जो पोषक तत्व है उसका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा
0: जी,
3: और जब इनका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा तो जो लाभदायक जीव
2: होगी और ऐसे टिकाऊ खेती में फसल का उत्पादन भी ज्यादा होगा और पशुओं का पालन पोषण भी अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि हानिकारक रसायन और कीटनाशक के प्रयोग से पर्यावरण पर अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, और जबकि उसके विपरीत जब अब टिकाऊ और ये प्राकृतिक खेती की जाएगी तो उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं दिखेगा, और टिकाऊ खेती करने पे देखिए लागत भी बहुत कम आती है
0: जी,
2: और पर्यावरण में प्रदूषण तो कम होगा ही, साथ साथ उत्पादन के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ का भी उत्पादन होगा, और अंत में मैं यही कहूंगा कि अस्थायी कृषि लाभदायक होना चाहिए।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आशा है सर हमारे किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के उनको अच्छे तरीके से जो आपने का जवाब जो दिया है का सर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सक्रिय श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
4: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा, और आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती से होने वाले लाभ क्या क्या हैं।

0: जी हाँ, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। जी हाँ साथियों, तो जाना कि जैविक खेती करने से कितने सारे लाभ होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए बाय बाय।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम को। और साथियों, अभी हमने जाना हमारे विषय विशेषज्ञ संजय कुमार जी से हमारे श्रोता साथियों और साथ साथ में किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के जवाबों को जाना, और जाना कि हम जैविक खेती से किस तरीके से लाभ ले सकते हैं और कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं।
0: साथियों के मन में बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो चल रहे थे और उनके काफी हद तक उनको जवाब भी मिल चुके होंगे। लेकिन श्रोताओं, अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल चल रहे हैं तो हमेशा की तरह हमारा नंबर नोट करिए, क्योंकि हमारा नंबर जो है वो आपके सारे सवालों का जवाब देगा। जी हां श्रोताओं, उसके लिए आपको लिखना होगा हमारा नंबर जो है 9219207749। श्रोताओं, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आप हमें पत्र के माध्यम से भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। साथियों, अब समय हो चला है कार्यक्रम में सवालों का। जी हाँ, हम आपसे पूछने वाले हैं एक सवाल और जिसका देना होगा आपको सही जवाब। अगर आप देते हैं सबसे पहले और सही जवाब तो आपको मिलेगा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 की तरफ से एक खूबसूरत सा उपहार। तो साथियों, आप तैयार हैं ना इनाम जीतने के लिए? चलिए जानते हैं हमारा आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? ये हमारा आज का सवाल है। और श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम का हमारा जो सवाल था, स्थायी खेती से क्या खेती की लागत कम की जा सकती है, ये हमारे कार्यक्रम का सवाल था। और जिसका सही जवाब देने वाले हैं डालचंद कुशवाहा जी, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक शब्दों में सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। तो इनको रेडियो बुंदेलखंड की तरफ से खूबसूरत सा उपहार जल्दी जल्द पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतने ध्यान से सुनने के लिए और हमारे सवालों में जुड़ने के लिए। आज का सवाल यानी कि कार्यक्रम का सवाल एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? तो आज के इस सवाल से उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और इस सवाल का सही जवाब देंगे, उनको हम अगले कार्यक्रम में उनके नाम के साथ शामिल करेंगे। चलिए श्रोताओं, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी आपकी और हमारी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
2: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत।
0: आपकी और हमारी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।
3: शुभ कर्म, बदलती जलवायु के लिए तैयार हूँ।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को अजीत का अभिवादन
2: और विमलेश का नमस्कार।
1: श्रोताओं, आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं लगातार कार्यक्रम को सुनने के लिए। और आज हम कार्यक्रम का प्रारूप थोड़ा सा बदलेंगे
2: जी।
1: अक्सर हम शुरुआत करते हैं एक सुविचार से, लेकिन आज आरंभ करना चाहते हैं एक लघु कथा से
2: जी।
1: जो कि आप कहते हैं कि हमें लघु कथा बहुत पसंद आती है, तो आइए सुनते हैं आज की लघु कथा।
2: एक बार एक नौजवान शिष्य महान दार्शनिक सुकरात के पास आया और उनसे पूछा,
1: गुरुवर, सफलता का रहस्य क्या है?
2: सुकरात ने उससे कहा,
1: मैं तुम्हें कल उत्तर दूंगा, कल तुम मुझे नदी के किनारे मिलो
2: जी। दूसरे दिन वो युवक सुकरात से नदी के किनारे मिला।
1: सुकरात उसे लेकर नदी में आगे बढ़ने लगे।
2: वे दोनों नदी में तब तक आगे बढ़ते रहे
1: जब तक नदी का पानी उनके गले तक ना आ गया।
2: और नदी के बीच में पहुंचकर अचानक ही सुकरात ने उस युवक का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया।
1: पानी के भीतर सांस लेने में अक्षम होने के कारण, श्रोताओ, वो युवक पानी से बाहर निकलने के लिए बुरी तरह से संघर्ष करता रहा,
2: लेकिन सुकरात की मजबूत पकड़ के सामने उसका ये संघर्ष विफल रहा।
1: मरता क्या ना करता, श्रोताओं, उस युवक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि किसी प्रकार पानी से बाहर आ जाए।
2: पानी से बाहर निकलते ही वो युवक हाँफते हुए तेजी से सांस लेने लगा।
1: उसे ऐसा करते देखकर सुकरात ने पूछा,
2: ये बताओ, जब तुम पानी के भीतर थे तब सबसे ज्यादा क्या चाहते थे?
1: उस लड़के ने कहा, मैं चाहता था सांस लेना।
2: सुकरात ने कहा,
1: यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना सांस लेना, तो वो तुम्हें मिल जाएगी।
2: इसके अतिरिक्त सफलता का कोई और रहस्य नहीं है।
1: तो श्रोताओं, आशा है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ये कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है
2: जी।
1: तो याद रखिए कि सफलता प्राप्त करने का रहस्य है
2: उसकी पूरी शिद्दत से चाह करना और वैसा परिश्रम भी करना।
1: जी हाँ, और वैसा परिश्रम भी करना
2: जी।
1: आपको बता दें श्रोताओं कि पिछले दिनों में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था, और प्रश्न था कि इन दिनों ओलंपिक खेलों में विजेताओं को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए जाते हैं
2: जी। प्राचीन ओलंपिक में विजेताओं को क्या दिया जाता था?
1: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि लगभग किसी का भी उत्तर सही नहीं था। इसका उत्तर है, प्राचीन यूनान में प्रथम आने वाले को जैतून के पत्तों का मुकुट,
2: दूसरे स्थान पर आने वाले को जैतून के पत्तों की माला,
1: और तीसरे स्थान पर आने वाले को जैतून का फल दिया जाता था। आइए श्रोता मित्रों, आप चलते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। और जैसा कि हमने कल भी किया था, आपको कार्यक्रम सुनने से पहले हल करनी होगी
2: एक पहेली,
1: और वह भी 30 सेकंड से एक
2: मिनट के अंदर,
1: क्योंकि आज का कार्यक्रम भी

0: इसी पहेली पर आधारित है।
1: पहेली है,
0: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान अपनी बांह स्वयं अपने हाथों से काटकर किस नदी में फेंक दी थी?
1: आपके लिए क्लू है,
0: बिहार,
1: शाहबाद।
0: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान अपनी बांह स्वयं अपने हाथों से काटकर किस नदी में फेंक दी थी?
1: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए ये लघु गीत।
0: जी हाँ, ये लघु गीत सुनिए। और जब ये लघु गीत बज रहा है तो जल्दी से हमें फोन मिलाकर आज के प्रश्न का उत्तर दीजिए।
1: उत्तर देने के लिए हमारा IVRS नंबर है
0: 8800440559।

0: आइए अब सुनते हैं ये कार्यक्रम।
1: जी हाँ श्रोताओ, आपको कार्यक्रम का नाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि कार्यक्रम सुनते सुनते आपको आज के प्रश्न का उत्तर देना है।
2: भारत माता की जय। हम किसानन का महाजनन से बदला लेकर इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिली। हमका सिपाहियन के साथ मिलकर लड़क चाहिए, महाजनन के बही खातों को जला डालो।
3: अठारह भारतीय इतिहास का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, जमींदारों, किसानों, काश्तकारों और जनता ने विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ गए थे। ये देखकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश धधक रहा था और विद्रोह की लहर फैल गई थी। भारत माता के कई सपूत आगे आए, जैसे जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी। मेरठ में 10 मई को विद्रोह का बिगुल बजा और 3 जुलाई को पटना में हुई पीर अली की फांसी की सजा ने आग में घी डालने का काम किया। जगदीशपुर, दानापुर और आरा पर पीर अली की फांसी का गहरा असर पड़ा। जनता बगावत करने लगी। कहा जाता है कुंवर सिंह और जगदीशपुर के लोगों ने पीर अली की याद में एक मजार बनवाई जिससे अंग्रेज और खफा हो गए। पटना के कमिश्नर ने कुंवर सिंह को मना किया, पर कुंवर सिंह कहां रुकने वाले थे। उनकी रगों में तो देशभक्ति का जज्बा उफान ले रहा था।
4: मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और

0: पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। ईस्वी में कुंवर सिंह का जन्म साहबजादा सिंह के घर हुआ। लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की जमींदारी की बागडोर संभाली। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोलकर मदद करते थे। इसी कारण कई बार वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे। उनके ऊपर धीरे धीरे कंपनी की बकाया राशि का कर्ज बढ़ता गया। अंग्रेज उनसे खफा थे, पर आम जनता बहुत खुश थी।
1: सुना तुमने?
2: क्या
1: पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है?
2: हैं?
1: अब हमारे कुंवर सिंह क्या करेंगे?
2: मेरा तो मन कहता है कि कुंवर सिंह लड़ेंगे, वो समझौता करने वालों में से नहीं है।
1: ठीक कहते हो भाई। अभी देखा नहीं, जब पीर अली की मजार पर गए थे तब उनका मन कितना भारी हो गया था। अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे।
2: हाँ, मुझे भी लगता है कुंवर सिंह जरूर लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे।
3: कुंवर सिंह चार भाई थे, वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपति सिंह। अमर सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे, वे हमेशा उनके साथ रहते थे। जब दानापुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए। दानापुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी।
4: बड़ बहादुर वाह हरकिशन वाह, अरे कैसे दानापुर में अंग्रेजन के छक्का छुड़ा दे ले। अरे का हो अब हमार कुंवर सिंह का करी?
5: अरे सुने में आयल बा कुंवर सिंह के सब खबर हो गई बा, कभो कुछ हो सके ना। हाँ
6: चाहिए कि जिसके बारे में
1: हुजूर, अभी अभी खबर मिली है कि दानापुर की देशी पलटन ने विद्रोह कर दिया है। अंग्रेजों से सिपाही लड़ते हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं, हमें क्या आदेश है?
7: क्या कहते हो अमर सिंह? ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है, सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमारे जाबाज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपकी क्या राय है?
8: भैया सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ गया है अंग्रेजों से दो दो हाथ हो जाएं। काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है, अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को रौंद देते हैं।
7: ठीक कहते हो अमर सिंह। रहीम खान
1: जी हुजूर,
7: सिपाहियों को संदेश भेजो कि हमसे आरा कोठी में मिलें।
1: जी हुजूर।
7: तो ठीक है, आरा चलने की तैयारी करो।
0: July 26, 1857 आरा में कुंवर सिंह की कोठी। चारों ओर सैनिकों की चहलकदमी। दानापुर से आए सैनिकों के सामने कुंवर सिंह खड़े हैं।
7: सैनिक भाइयों और बहादुर साथियों, अब समय आ गया है कि हम कंपनी की गुलामी की जंजीरें काटकर फेंक दें। आप सबने विद्रोह करके

0: हिम्मत और साहस का परिचय दिया है। हरकिशन सिंह और रंजीत राम दोनों बहादुर सिपाही हैं। इनका युद्ध करने का कौशल और क्षमता सबसे उत्तम है। ये दोनों सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़िए, सबसे पहले हमें अंग्रेजों को आरा से बाहर निकालना है, फिर पूरे देश से। मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल को खबर भिजवाई है। शीघ्र ही हम सारे देश में एकजुट होकर लड़ेंगे।
1: अमर सिंह जिंदाबाद, अमर सिंह जिंदाबाद, हरकिशन सिंह जिंदाबाद, अमर सिंह जिंदाबाद, रंजीत राम जिंदाबाद।
2: सैनिकों के नारों से आरा कोठी का प्रांगण गुंजायमान हो उठा। सैनिकों की चहल पहल बढ़ गई। तभी सैनिकों की तरफ से हरकिशन सिंह आगे बढ़े और कुंवर सिंह की बगल में आ खड़े हुए। अदब से उन्हें सलामी देते हुए वो सैनिकों की तरफ मुखातिब हुए।
3: साथियों, आप सबने दानापुर में अंग्रेजी फौजों और अफसरों के द्वारा किया गया शोषण और दमन देखा है। उनके यहाँ रहते हुए हम स्वाधीन नहीं है।

0: कहा जाता है कि कुंवर सिंह और हरकिशन सिंह के भाषण का सिपाहियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में देशी सिपाहियों ने अंग्रेजी फौजों की आरा में घेराबंदी की। लड़ाई जमकर हुई। कई अंग्रेज सैनिक लड़ाई में मारे गए। कुंवर सिंह ने कैप्टन डनवर की फौज को पराजित किया। इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा फतेह के नाम से जाना जाता है।
1: अंग्रेजी फौजों ने दोबारा तैयारी की और कुछ ही दिनों बाद मेजर आयर के कमांड में बीबीगंज के स्थान पर एक और युद्ध हुआ। कुंवर सिंह को अपने सिपाहियों के साथ जगदीशपुर लौटना पड़ा। 12 अगस्त को एक घमासान युद्ध हुआ। कुंवर सिंह की सेना पराजित हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। कुंवर सिंह और उनके सिपाहियों को जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। फिर फौज संगठित की। देश को आजाद कराने के लिए नौजवान स्वयं फौज में आगे आए। लोगों का जोश देखकर मिर्जापुर, रीवा, बांदा और कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची।
2: कुंवर सिंह जिंदाबाद! कुंवर सिंह
3: जिंदाबाद!
2: भारत माता की
3: जय!
2: भारत माता की
3: जय!
1: लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का जोरदार स्वागत किया।
4: अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह मौजूद हैं। इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है। अंग्रेज हुक्मरान इनसे घबराते हैं। हमने कुछ फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें।

0: बंदा जानता है कि आजमगढ़ से अंग्रेजों को हटाना कितना मुश्किल काम था। हम आजमगढ़ की मिल्कियत बाबू कुंवर सिंह के सुपुर्द करते हैं।
1: आमीन। खुदा आपकी मुराद पूरी करे।
0: हम चाहते हैं कि बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करें।
2: बेगम साहिबा, आपके इस सम्मान से हम आपके एहसान मंद हैं। आपने एक नई जमीन दी है, अल्लाह को मंजूर होगा तो हम आजमगढ़ से भी अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे।
3: कुंवर सिंह
4: जिंदाबाद,
3: कुंवर सिंह
4: जिंदाबाद,
3: भारत माता की
4: जय,
3: भारत माता की
4: जय।
5: ये एक ऐतिहासिक क्षण था। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं कि वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करने लगे। कुंवर सिंह ने बेगम हजरत महल के विश्वास को नहीं तोड़ा। 17 मार्च को कुंवर सिंह और देशी सिपाहियों की टुकड़ियां अतरौलिया के मैदान में इकट्ठा हुईं। 22 मार्च को आजमगढ़ जिले में तैनात कर्नल मिलमैन ने कुंवर सिंह के सिपाहियों पर भारी हमला किया।

0: अतरौलिया का मैदान सिपाहियों के खून से लथपथ हो गया। छब्बीस मार्च को मिलमैन को पराजित करते हुए कुंवर सिंह ने आजमगढ़ और अन्य इलाकों पर कब्जा कर लिया।
1: आजमगढ़ पर विजय के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर लौटने लगे। रास्ते में ब्रिगेडियर डगलस की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ। ब्रिगेडियर डगलस की हार हुई। अंग्रेजी सेना फौजी सामान छोड़कर भाग गई। दूसरी ओर जनता ने राजा कुंवर सिंह का स्वागत किया।
2: अरे देखो देखो, अरे घोड़े पर सवार होकर हमारे राजा कुंवर सिंह कैसे जा रहे हैं।
1: कुंवर सिंह गाजीपुर पहुंचे पर डगलस ने उनका पीछा जारी रखा। कहा जाता है शिवपुर घाट से गंगा नदी पार करते हुए राजा कुंवर सिंह की दाहिनी बांह में गोली लगी जिसे बाएं हाथ की तलवार से काट कर उन्होंने गंगा में बहा दिया।

0: मांगे, आज तुझको ही देता हूँ ये।
1: दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार, गोली आकर लगी बाह में, दायां हाथ हुआ बेकार। हुई अपावन बाहुजान, बस काट दिया लेकर तलवार। ले गंगे ये हाथ आज तुझको ही देता हूं उपहार। वीर भक्त का वही जाह्नवी को मानो नजराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था।
2: कहते हैं कुंवर सिंह को अपना हाथ काटते देख ब्रिगेडियर डगलस अवाक रह गया।
3: ओह माय गॉड, देखो शाहबाद खबर करो कि कुंवर सिंह नदी पार कर गया है।
4: Yes, sir.
2: घायल अवस्था में कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। कंपनी ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में तोपों से लैस एक बड़ी फौज जगदीशपुर भेजी। ये 1857 के संग्राम का चरम सीमा का समय था, जब पहली बार देशी फौज ने कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक बड़ी संगठित फौज को पराजित किया था। कहते हैं जगदीशपुर के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन लंबी लड़ाई में कुंवर सिंह घायल हो गए। उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। इस युद्ध में वे और भी घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। पूरा शाहबाद शोक में डूब गया। इस तरह 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह की स्मृतियां दर्ज हैं। वहां के लोकगीतों के वे नायक हैं। ऐसे नायक बार बार जन्म नहीं लेते।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम वीर कुंवर सिंह।
1: ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा शत शत नमन।
0: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं आज का दूसरा कार्यक्रम,
1: खत्म हुआ झगड़ा।
2: भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
3: मैं खेलने नहीं जाऊं, जैसे ही मैं खेलने जाऊंगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूं।
2: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
3: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा, मैं खेलने नहीं जाता। छह एकम छह,
2: छह एकम छह,
3: छह दुनी बारह,
2: छह दुनी बारह।
3: अरे यार, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। छेती अठारह,
2: छेती अठारह।
4: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
5: अरे मीना, तू रो क्यों रही है? और राहुल, तू खेलने नहीं गया?
3: माँ, मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
5: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
3: मैं क्या करूँ, क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
5: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
3: ये कैसे होगा, मैं खेलूं भी पहाड़ा भी सिखाऊं?
5: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
4: वाह, क्या बात है। लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
2: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ तुम खेलने चले जाते हो।
3: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा अब रो मत। अच्छा बता, तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
2: करता है, पर पहाड़ा
3: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम

0: खेलने?
1: फिर पहाड़ा कब?
0: देख, मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह 1-2 घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
1: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूं।
0: नहीं कहूंगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूंगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा। पक्का?
1: पक्का? फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
0: क्यों करूंगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
1: हाँ सच, तो फिर मैं खेलने जाऊं?
0: चप्पल तो पहन लो, मैं भी आ रहा हूँ।
2: कमाल है भाई, ठीक ही है, दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो?
3: खत्म हुआ झगड़ा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आशा है कि आज का प्रसारण आपको जरूर अच्छा लगा होगा।
4: इसी प्रकार सुनते रहें उमंग,
3: और मन में आने दीजिए नई तरंग,
4: और अपने मित्रों में बांटते रहें
3: नए मन की तरंग के साथ मन की उमंग।
4: अब अजीत और विमलेश को आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार, नमस्कार।

आप सभी का स्वागत है हेल्थ ऑन एयर के पॉडकास्ट पर। आज हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, गर्भवती महिलाओं में टीकाकरण का महत्व। प्रेगनेंसी के दौरान स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। आज का कॉलम लिया गया है सुमेंद्र बख्शी के आर्टिकल से। सुमेंद्र बख्शी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और कोविड वैक्सीन स्पेशलिस्ट हैं। आज इस पॉडकास्ट के द्वारा हम जानेंगे कि टीकाकरण क्यों महिलाओं के लिए गर्भावस्था में इतना महत्वपूर्ण होता है। ये सच है कि बच्चों की टीकाकरण की तुलना में गर्भवती महिलाओं में नियमित टीकाकरण का दर हमेशा कम होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी टीडीएपी वैक्सीन का कवरेज 56.6% है। आज भी कई चिकित्सक और समुदाय के सदस्य गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण को लेकर झिझकते हैं, क्योंकि इससे गर्भावस्था के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। शिशु पर संभावित हानिकारक प्रभावों के कारण गर्भावस्था के दौरान कई दवाओं का सेवन मना होता है। हालांकि जहां तक टीकाकरण का सवाल है, दुनिया भर में सुरक्षा मुद्दों का सख्ती से पालन किया जाता है, और अब हमारे पास स्पष्ट डेटा समर्थित समझ है कि क्या सुरक्षित है और क्या असुरक्षित है। मातृ टीकाकरण क्यों महत्वपूर्ण है? मातृ टीकाकरण के दो अलग अलग फायदे हैं। सबसे पहले, यह गर्भावस्था की अवधि के दौरान मां और भ्रूण दोनों को गंभीर संक्रमण से बचाता है, और दूसरा, यह आईजीजी और आईजीए एंटीबॉडीज के प्लेसेंटल ट्रांसफर द्वारा जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को संक्रमण से बचाता है। इम्यूनोग्लोबिन ए यानी आईजीए, यह श्वसन पथ और पाचन तंत्र के स्तर के साथ साथ लार, आंसू और स्तन के दूध में पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन जी यानी आईजीजी, यह सबसे आम एंटीबॉडी है। यह रक्त और शरीर के अन्य तरल पदार्थों में होता है। यह बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण से बचाता है। गर्भावस्था के दौरान कौन से टीके लगवाना वर्जित है? जीवित क्षीण वायरस टीकों यानी लाइफ अटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन्स से गर्भावस्था के परिणामों पर संभावित प्रतिकूल प्रक्रिया हो सकती है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। वर्तमान में उपलब्ध लाइफ के उदाहरण क्षीण टीके वायरल संक्रमणों के खिलाफ खसरा, कठमाला, रुबेला, चेचक, पीला बुखार, इन्फ्लुएंजा और मौखिक पोलियो वैक्सीन शामिल है। जीवित

चीन जीवाणुरोधी टीकों में तपेदिक, बीसीजी और मौखिक टाइफाइड टीका शामिल है? गर्भवती महिलाओं में वैक्सीन का भरोसा कैसे बढ़ाएं? महिलाएं अपनी व्यापक घरेलू जिम्मेदारियों के कारण अक्सर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का कम उपयोग करती हैं और अक्सर अपनी भलाई की उपेक्षा करती हैं। गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण के लाभों के बारे

प्राथमिक देखभाल चिकित्सा की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिलाओं में मातृ एवं नवजात टेटनेस से सुरक्षा के लिए टेटनेस टॉक्साइड वैक्सीन या TDAP की कितनी खुराक लेनी चाहिए? भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आमतौर पर 3 टीकाकरण की सिफारिश की जाती है। इन टीकों में टेटनेस टॉक्साइड, TDAP और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन शामिल है। टेटनेस एक घातक जीवाणु संक्रमण है जिससे माँ और नवजात शिशु दोनों को खतरा होता है। क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी के कारण यह घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और इलाज न किए जाने पर घातक जोखिम पैदा कर सकता है। नवजात टेटनेस ठीक न हुए नाभि स्तंभ के संक्रमण के कारण होता है। वैक्सीनेशन ही इसकी रोकथाम का एकमात्र तरीका है। टेटनेस टॉक्साइड के टीके गर्भावस्था के दौरान भी सुरक्षित हैं। भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में गर्भावस्था के दौरान 2 खुराक की सलाह दी जाती है, जिसमें 3 साल के भीतर अगली गर्भधारण के लिए बूस्टर खुराक होती है। TT टीकाकरण मातृ एवं नवजात सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे समय से पहले होने वाले बच्चे की जन्म की संभावना को कम किया जा सकता है। गर्भावस्था का पता चलने पर TT1 यथाशीघ्र दिया जाना चाहिए। TT2 TT1 के 4 सप्ताह के बाद दिया जाना चाहिए। यदि मां ने पिछली गर्भावस्था में 3 साल के भीतर TT2 की खुराक ली है तो भारत के राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार टीटी की एक बूस्टर खुराक की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं कि स्तनपान अवधि के दौरान कौन से टीकों की सिफारिश की जानी चाहिए। एमपॉक्स, चेचक और पीले बुखार के टीकों को छोड़कर अन्य सभी टीके जैसे निष्क्रिय, जिनमें कि एंथ्रेक्स, हेपेटाइटिस ए, HPV, इन्फ्लुएंजा, JE, IPV और रेबीज आते हैं। इसी के साथ लाइव अटेन्यूएटेड यानी जीवित क्षीण वायरस, जिनमें इन्फ्लुएंजा, MMR, चिकन पॉक्स और थायराइड आता है, ये सभी लिए जा सकते हैं। लाइव अटेन्यूएटेड यानी जीवित क्षीण, जिनमें आते हैं इन्फ्लुएंजा, MMR, चिकन पॉक्स, टाइफाइड। रिकॉम्बिनेंट यानी पुनः संयोजक, जिनमें आते हैं हेपेटाइटिस बी और मेनिंगोकॉकल। कॉन्जुगेट यानी संयुग्म, जिनमें आते हैं HIV, PCV, मेनिंगोकॉकल। पॉलीसेक्राइड, जिनमें आते हैं PVC और टाइफाइड। ये सारे वैक्सीन स्तनपान की अवधि के दौरान सुरक्षित रूप से उपयोग किए जा सकते हैं। हालांकि बाल टीकाकरण दरों में काफी प्रगति हुई है, लेकिन गर्भवती महिलाएं अभी भी बड़े पैमाने पर वंचित हैं। टीकों पर विश्वास पैदा करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, सामान्य चिकित्सकों, प्रसूति रोग विशेषज्ञों और स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा बेहतर संचार रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता है। विश्वास निर्माण का यह प्रयास न केवल बच्चों और माँ की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि टीकाकरण के समग्र रूप में समाज को मिलाने वाले व्यापक स्वास्थ्य लाभों के लिए भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहन को आपके अपने रेडियो साथी मनीष कार्यक्रम खेत खलियान में बहुत ही बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे किसान साथी उनको बता दे, वो चाहते हैं कि आज के हमारे जो कार्यक्रम खेत खलियान कार्यक्रम में आज बतकाव करवे जा रहे हैं कि हमारे किसान साथी कैसे हैं। ऐसे में किसान साथी टमाटर की नर्सरी कौन तरीके से कर सकते हैं, अब ऐसे खेत की तैयारी कर ले और कौन तरीके से हमारे किसान साथी कौन सा बीज लगा सकते हैं, बाबे साहब बतकाव करेंगे। आपको बता दे, वो चाहते हैं कि खेत कल्याण कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बतकाव को लेकर आते हैं और हमारे किसान साथियों को वो छोटी सी छोटी जानकारी उपलब्ध कराते हैं जो हमारे किसान साथियों की आय को दुगनी करवे के लाने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। खासतौर पर देखो जा रहा है कि अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में अब खंड खंड वर्षा होती हैगी और ऐसे में किसान साथी हमारे बहुत सारे किसान साथी जो खेती पर आश्रित रहेंगे, तो ऐसे में हमारे किसान साथी का कर रहेंगे। तो खेती के संगे संगे चूंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में जा वक्त बहुत ज्यादा धूप पड़ रही हैगी और हमारे किसान साथी फ्री बैठे हुई हैं, तो अब किसान साथियों को अगली फसल की तैयारी कर लें चजित और अपनी आय तबई दुगनी हुए जब छोटी छोटी बातों को हम ध्यान करेंगे। जैसे कि खेत खाली हैंगे अपन नर्सरी भी कर सकते हैंगे और संगे संगे हम अपन फलदार वृक्ष भी अपन लगा सकते हैंगे अपने और नर्सरी भी लगा सकते हैं, फूलन की नर्सरी भी लगा सकते हैं। तमाम प्रकार के ऐसे विकल्प है खेती किसानी में जो हमारे किसान साथी करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैंगे। तो आज हमारे संगे विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सिंह जुड़ेंगे और वो बतकाव करेंगे और बताएंगे कि जब गर्मी के मौसम में हमारे किसान साथी कैसे अपनी टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं, कौन सा बीज और का का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से मट्टी को बनाना चाहिए, कौन सी खाद डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, पूरी जानकारी जो कार्यक्रम के माध्यम से सुनेंगे अपन। लेकिन जैसे पहले अपन कैसे मौसम आधारित अपन खेती करते हैंगे और मौसम का कुछ ठिकाना ही नहीं रहता है कि कब बरसात हो जाए, कब जहाँ धूप न करे, ऐसे में हमारे किसान साथी आप का करवे तो मौसम आधारित खेती करवे कार्यक्रम को आगे बढ़ात भय अपन एक 900 लोकगीत सुन ले रहे और जाके बाद हम अपने विषय विशेषज्ञ के पास आपको लुवा चले और उनसे जाना है कि हमारे किसान साथी कौन तरीके से टमाटर की नर्सरी को खेती कर सकते हैं, कौन वैरायटी अपने खेतन में लगा सकते हैं। तो आओ सुनते हैं जो 900 लोकगीत को।

गए। कहने लगी अपने पिता से, वो आत्मा कह रही है, वक्त आने से पहले ही ढल जाती मैं। अरे वक्त आता मैं चली जाती, आप मुझे विदा कर देते, किसी गरीब के साथ में भेज देते, और मगर इसके बावजूद भी दिक्कत थी।

कहने लगी कि अगर मैं होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी

0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहनों को एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। अरे अबे अपन ने जो नो सो लोकगीत को सुनो, लोकगीत को आनंद लाओ, कार्यक्रम को आगे बढ़ा तो भाई अपने विषय विशेषज्ञ के पास आपको लुआ चला थे और उनसे जानते हैं कि टमाटर की नर्सरी हमारे किसान साथी कौन तरीके से लगा सकते हैं, काका सावधानी उनको बरतने चजित आओ सुनते हैं जा चर्चा को। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे किसान साथी कौन तरीके से, अब चूंकि खाली खेत पड़े हैं तो टमाटर की बहुत ज्यादा महंगाई भी हैगी, टमाटर की नर्सरी कैसे लगा सकते हैं, कौन कौन बातन को उनको ध्यान में रखें चजित।
1: टमाटर हमारे भारतवर्ष के उत्तरी मैदानों में काफी खेती की जाती है और लगभग पूरे वर्ष भर इसकी मांग बाजार में बनी रहती है। तो अब आप देखें अगर हमारे किसान भाई जो कि फरवरी मार्च की खेती कर रखे हैं, अब वो फसल धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है, तो अब मैदानी क्षेत्रों में जो टमाटर है अब इतनी गर्मी के कारण पकता है तो बिल्कुल लाल भी नहीं होता है, आप देखेंगे हल्का लाल रंग का बन जाता है, बस उसी पे तुड़ाई करनी पड़ती है क्योंकि टेम्परेचर जब 40 डिग्री ऊपर होने लगता है तो उसमें पिगमेंट ही नहीं बनता है लाल रंग का लाइकोपिन, इस वजह से वो टमाटर लाल नहीं होता है। तो ये गर्मी का प्रकोप है, उसकी वजह से लाल नहीं बनता है। तो इस वजह से अब ये धीरे धीरे वैसे भी वो फसल समाप्ति की ओर है, तो अब हमारे किसान भाई ये देखें अब अगली फसल की तैयारी उनको करने का समय आ रहा है कि अब नेक्स्ट टमाटर की जो खेती उनको करनी है तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी सोचनी है, हमें कौन सी वैरायटी लगानी है, किस किस्म का चुनाव करना है और किस तरह से उसके नर्सरी की तैयारी करनी है, तो इस बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और अगर आप अभी से चुनाव करके उन किस्मों का चयन करके अपने पास उसके बीज उपलब्धता कर लेंगे तभी तो आप नर्सरी बनाएंगे, फिर आपकी फसल अच्छी होगी। तो आप देखें ये जो हमारा आने वाला समय है उसमें एक बीमारी बहुत तेज आती है टमाटर के अंदर में हमारे उत्तर भारत के मैदानों में, जिससे काफी क्षति पहुंचती है, उसको हम लोग पर्ण कुंचन रोग बोलते हैं टमाटर में, अंग्रेजी में लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं। इसका प्रकोप बहुत अधिक होता है इस सीजन की खेती में जो कि फरवरी मार्च वाले में कम होता है। तो और या तो फिर जो आपका समय है आप अक्टूबर में जो बुआई करते हैं उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ये जून जुलाई वाला मौसम, जुलाई अगस्त में जो ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई आप करते हैं, इसमें अधिक से अधिक आपका ये पर्ण कुंचन रोग आने की संभावना होती है। तो आपको इस समय ये ध्यान रखना है कि जो किस्म का चुनाव आप करेंगे, वैसे तो टमाटर की खेती में बहुत सारी किस्मों का आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन आपको ये विशेष ध्यान इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूँ कि जो पर्ण कुंचन रोग से रोधी किस्में हैं उनका ही आप चुनाव करें तो इस सीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। और अक्टूबर के मौसम के लिए तो बहुत सारी वैरायटीज हैं, उसको आप खेती कर सकते हैं। तो आप जब अभी बुआई की बात समय जो हम कर रहे हैं कि आप जून, मध्य जून से लेकर के पूरा जुलाई में आप इसकी नर्सरी की टमाटर की डालेंगे तो उसके लिए जो उपयुक्त किस्में हैं कि आप देखें पंजाब से हमारे जो कुछ किस्में निकाली गई हैं जो कि काफी बहुत ही अच्छी हैं और उनकी उपज भी अच्छी मिलती है और उनका साइज भी 80 से 90 ग्राम तक का होता है हर टमाटर का और लाल रंग के होते हैं और इसमें सीमित बढ़वार वाली फसल है तो जिससे आपको बहुत ज्यादा ये सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है चढ़ाने की, तो आप खुले खेतों में उसकी खेती कर सकते हैं जिसको हम लोग डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट वाला बोलते हैं। तो उसमें पूसा बरखा 1, पूसा बरखा 2 और पूसा बरखा 4, ये जो 3 किस्में हैं हमारे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने निकाली है जो बिल्कुल ही लीफ कर्ल वायरस रेजिस्टेंट किस्में हैं, ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और इसी क्रम में हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है वहां से भी 2-3 अच्छी किस्में निकाली गई हैं जो इस सीजन के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इसमें है काशी यमन, काशी विशेष, काशी अमृत और एक हाइब्रिड किस्म भी उन्होंने बनाई है अभी नई निकाली है काशी अभिमान। तो ये जो 4 किस्में हैं जो काशी से निकाली गई हैं और 3 किस्में आपको पंजाब से निकाली गई हैं, ये इस बरसात के मौसम में जो आपकी फसल आएगी उसके लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है। उसका कारण सिर्फ यही है कि इस सीजन में पर्ण कुंचन रोग का प्रकोप बहुत अधिक होता है, तो जो दूसरी किस्में लगाएंगे आप उसमें लगाएंगे लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट आपको बहुत करना पड़ेगा, बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके आप उस टमाटर से कुछ खेती से आप लाभ ले पाएंगे। तो हमारे किसान भाई आप देखें अगर आप 1 हेक्टेयर टमाटर की खेती लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है, लेकिन हाइब्रिड किस्म अगर है तो उसका 200 से 250 ग्राम बीज ही पर्याप्त होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और उसी हिसाब से आप इस बीज की मात्रा को अपने पास सुलभ कर लें और किस्मों का चयन कर लें। आप देखें जो खुले खेत हैं, आपको टमाटर की खेती करनी है तो कम से कम आपको 10 क्यारी की आवश्यकता पड़ेगी, 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची। इस तरीके से आप 10 क्यारी बनाएंगे और हर क्यारी में लगभग 40 ग्राम के आसपास बीज की आप बुआई करेंगे तो आपके अच्छे पौधे तैयार होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो इसलिए सबसे पहले आपको भूमि शोधन करने की जरूरत है, और भूमि शोधन दो प्रकार से होती है। एक तो यह है कि जो सौर हमारा इतना गर्मी का मौसम है, इसमें खाली आप अगर नमी है तो उसमें डाल दें, अगर लेकिन उसमें एक चीज और डाल दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसा मैंने फॉर्मलिन आती है आपको, फॉर्मल्डिहाइड नाम से भी आती है बाजार में, तो आप उस दवा को ले लें और 25 ml दवा 1 लीटर पानी में इस हिसाब से घोल के आप पूरे क्यारियों के ऊपर अच्छे से छिड़काव कर दें, जिससे कि उसमें नमी बन जाए। और नमी हो जाने के बाद जो सफेद पॉलीथीन की सीट आती है, चादर आती है, वो 15 से 50 माइक्रान वाली, उसको लेकर के आप उसको चारों तरफ से उसको ढक दें और साइड से इतनी मिट्टी से दबा दें साइड को कि उसके अंदर हवा पास न कर सके, बिल्कुल टाइट बंद कर दें। तो जो धूप पड़ेगी अंदर और नमी जो नीचे है उसके अंदर वाष्प पैदा होगा, और वाष्प होने से जो अंदर की जमीन के नीचे फफूंद या कीड़े मकोड़े हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। तो इससे काफी हद तक आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो आप जब इस तरीके से कर रहे हैं उसके बाद आप उस पॉलीथीन को हटाएं। पॉलीथीन हटाने के बाद 1 हफ्ते तक पॉलीथीन को ढके रखिएगा, उसके बाद हटाएं। हटाने के बाद उससे थोड़ा सा फावड़े से लेकर के मिट्टी को खोल दें, हल्का सा गुड़ाई कर दें, तो जिससे उसके अंदर जो गैस भरी हुई है दवा की वो धीरे धीरे 4-5 दिनों में निकल जाएगी। उसके बाद फिर आप खेत की तैयारी करें और उसमें हर क्यारी में 15 से 20 किलो सड़ी गोबर की खाद आपके पास है या केचुए की खाद भी उपलब्ध है तो जो भी है आप उसमें क्यारी में मिलाएं, और क्यारी में डालने के बाद उसमें हर क्यारी में 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट भी उस क्यारी में मिलाएं, छिटक दें मिट्टी में, और संभव है तो 10 ग्राम प्रति क्यारी फोरेट ये भी आप उसमें मिला सकते हैं, जिससे कि कोई जमीन में जो कीड़े होते हैं, कटुआ कीट होते हैं और कोई बोरर के कीट होते हैं तो वो भी मर जाते हैं। तो इस तरीके से आपका खेत इसमें डाल करके बिल्कुल खेत को एकदम अच्छी से गुड़ाई करके घास खरपतवार निकाल करके बिल्कुल तैयार रखें और भुरभुरा हो बिल्कुल खेत, यह ध्यान रखना है। तो जब खेत बिल्कुल आपका तैयार हो गया और बीज शोधन, अगर आपने बाजार से बीज खरीदी है तो शोधित करके ही बीज आती है, अगर आपको शुद्ध बीज मिल रहा है बिना शोधित के, जिसका कि हल्के पीले कलर का बीज आपको दिखाई दे रहा है जो लगता है कि ये बिना ट्रीटेड है, तो आप चाहें तो उसमें कैप्टान 2 से 3 ग्राम 1 किलो बीज, जिसे आपने आधा किलो के आसपास ली है, तो एक चुटकी दवा सिंपल 1 से 2 ग्राम उसमें मिला करके बिल्कुल ऐसे ऐसे मिक्स करने के बाद तो वो बीज शोधन हो जाएगा उससे। फिर आप 5 सेंटीमीटर की कतारों में लाइनें निकालें हर क्यारी में और गहराई रखें 1.5 से 2 सेंटीमीटर की, तो उसमें फिर इस बीज को बुआई करें। बीज बहुत घना ना बोएं इस बात का ध्यान रखें, और जब बुआई कर लेते हैं आप तो उसके ऊपर फिर सड़ी हुई गोबर की खाद का जो मिक्सर है उसके ऊपर से ऐसे फैला करके उसको बराबर समतल कर दें, बिल्कुल समतल रखें ऊपर, जिससे पानी दें तो ऊंचा नीचा ना हो, कहीं पानी ज्यादा ना हो। और बुआई करने के बाद सूखी हुई घास अगर आपके पास है या पराली है तो उसके ऊपर फैला दें अच्छे से। ये दो काम करती है, नीचे नमी को संरक्षण रखती है और ऊपर से तेज वर्षा वगैरह हो गई तो वो अधिक पानी से बीज इधर उधर न बह जाए उसको भी बचाती है। तो इस चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा बीज का जमाव होगा। एक बात और ध्यान रखें, गर्मी का दिन है, हो सके तो सुबह या सायं ही पानी दें, दिन में और पानी ना दें। कभी कभी क्या होता है हमारे किसान भाई कि अगर आपने सब कुछ सुरक्षात्मक ढंग भी अपनाया हुआ है और लेकिन फिर भी मौसम के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो हमारे नर्सरी के

0: अंदर कमर तोड़ वाली बीमारी जो डैम्पिंग ऑफ हम कहते हैं, तो वो आर्द्र गलन भी बोलते हैं, तो इस तरीके की बीमारी जो आ जाती है, इससे पौधे जमाव के बाद नीचे गिरने लगते हैं, उनकी कमर टूट जाती है, बहुत पतली होती है। तो उसके लिए आप जब आप सिंचाई करते हैं, सुबह या शाम करना है खाली सिंचाई, तो उस पानी में 20 ग्राम डाइथेनियम 45 10 लीटर में पानी के हिसाब से घोल बना करके आप उसको जब सिंचाई करते हैं उसी में छिड़काव किया करें। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप जो आपने सड़ी हुई गोबर की खाद डाली हुई है, अगर उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है और नर्सरी के पौधे हमारे जो पीले दिखाई देने लगते हैं, तो उसमें आप 0.3% यूरिया का घोल छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि 3 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में घोल बना करके एक हल्की सी छिड़काव कर दें, तो जो पौधे हैं, जो हमारी नर्सरी की पौधे, उनकी रंगत पीले से उठ के हरे रंग की हो जाएगी और फिर पौधों की बढ़वार बढ़ जाएगी। तो ये आपके काफी अनुभव पे निर्भर करता है, आप उसको देख करके समझ करके तब इन चीजों का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा डाइथेन भी नहीं डालें, अगर जरूरत है तभी डालें, नहीं तो सिर्फ आप पानी दें। और इस तरीके से आपका कम से कम 30 दिन की पौध 15 सेंटीमीटर के आसपास पौध हो जाती है जब, तो वो बिल्कुल रोपाई के लिए तैयार होती है। और उस पे आप ध्यान रखें, रोपाई से पहले 4-5 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं देंगे, और फिर जब आपको पौध उखाड़नी हो उस दिन आप पानी दीजिएगा, और फिर पानी निकालने के बाद हर पौध को आप कम से कम डाइथेनियम 45 में या फिर इमिडाक्लोप्रिड भी कभी कभी डालना पड़ता है, कभी आपको चूसक कीट के भी प्रकोप दिखाई दे जाते हैं नर्सरी के अंदर भी, तो आप इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा है ये, 3 ml दवा 10 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करेंगे, तो इससे किसी भी तरीके की चूसक वाले या अन्य कीट का प्रकोप नर्सरी में नहीं होगा और स्वस्थ पौध की उत्पादन होगी, जिससे अधिक से अधिक पौधे आपके मेन खेत में जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो उनका एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होगा और फिर अधिक से अधिक लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहनों को एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और साथियों, अब अपन ने डॉक्टर साहब से कितनी महत्वपूर्ण जानकारी को सुनो है गो, और अपन ने जानो के कौन तरीके से हमारे किसान साथी नर्सरी कर सकते हैं, टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं, और संगे संगे कौन कौन सी वेरायटी हो सकते हैं। उन्होंने पंजाब की कछु वेरायटी बताई है, कछु वाराणसी की वेरायटी बताई है जो बहुत अच्छे आपको उत्पादन देंगी, तो ऐसे ही वेरायटी अपन हो समझने हैं, सोचने हैं, तब ही अपने खेतन में लगाने हैं। अब तैयारी करवो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और संगे संगे अपने खेत जो खाली पड़े हैंगे उनकी जुताई भी हमारे किसान साथी कर सकते हैंगे। हमें आशा है कि हमारे किसान साथी इन छोटी छोटी बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखें चाहिए उनको, कैसे आने वाला समय जो है बहुत महंगाई को हो जाएगा, कैसे अबे अपन देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अपन हो लगत लग जाएगी, और मुनाफा अगर देखो जाए यानी उत्पादन देखी जाए तो बहुत कम हैंगे। अब कृषि विभाग की ओर से बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही, योजना चलाई जा रही हैंगी, तो उनको भी अपन हो लाभ लेने, संगे संगे बीजन को चेंज जो अपन करते हैंगे तो कृषि विभाग की ओर से जो कृषि विस्तार अधिकारी रहेंगे उनके पास जाके अपन को संपर्क करने, उनसे पूछने हैं कौन तरीके के कौन सा बीज लगाना चाहिए, कौन तरीके से अपन को तैयारी करनी चाहिए। और संगे संगे एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहते हैं कार्यक्रम के माध्यम से अपन को, कि हमारे किसान साथी अभी चूंकि खाली खेत पड़े हैं तो अपनी मिट्टी को परीक्षण अवश्य करा ले, ऐसे कौन से तत्व की कमी हैगी जो पता चल जाए, अगर जो पता चल जाए तो अपन देख सकते हैंगे, समझ सकते हैंगे, और अपन जाके भरपाई भी अपन कर सकते हैं कि कौन से तत्व की कमी है। अब जाके तत्व को पूर्ति करवे के लाने कौन सी दवा अपन को डालना चाहिए, कौन सी का कौन सी अपन को बीज लगाना चाहिए, तो ये सारी जानकारी अपन को उपलब्ध हो जाते हैं। अपने पास फैसिलिटी हैगी, अगर अधिक जानकारी आपको पाने हैं तो केबी की चले जाओ कृषि विज्ञान केंद्र, उतर जाके बहुत अच्छी अच्छी वेरायटी अपन को उपलब्ध हो जाते हैं, उनसे भी पूछो, वैज्ञानिक रहते हैं उनसे भी सलाह लो, तभी अपन आने वाले समय में अपन अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। आप साथी रहो, हम समय होते हैं जा कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जावे को, तो कार्यक्रम आपको कैसो लगो हमें जरूर बताओ। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जा कार्यक्रम खेत कल्याण से जावे की इजाजत, आपकी हमारी फिर हुई अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लाने नमस्कार, राम राम।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इविरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जानने के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और साथियों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन विधा देवी गीतन को, और देवी गीतन को आनंद ले हैं। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। सो आओ दोस्तों, देर न करत वह कार्यक्रम को तो आगे बढ़ाऊ थे और कार्यक्रम में सुनत हैं इन प्यार प्यारे से देवी गीतन को। सो आओ सुनत हैं सबसे पहले जो गीत जी गा रहे हैं दिनेश सोनी जी।
1: दर्शन के

एक आसमा माँ की, विश्वेश्वरी जगत की माता, सुन लो बात यहाँ की।

दर्शन से तरसन लगी नजरिया, मैया खोल दो मैया खोल दो जे द्वार की किबरिया, मैया खोल दो द्वार की किबरिया।

0: अखंड शक्ति बुंदेलखंड में शक्ति प्रचंड तुम्हारी, खोलो पलक झलक दई श्री जय मिट गई ललक हमारी, खोलो पलक झलक दई श्री जय मिट गई ललक हमारी। पान बतासा ध्वजा नारियल, पान बतासा ध्वजा नारियल से भर गई चौतरिया, मैया खोल दो, मैया खोल दो जे द्वारे की किबरिया, मैया खोल दो द्वारे की किबरिया। दर्शन के लाने बरसन से, दर्शन के लाने बरसन से तरसन लगी नजरिया, मैया खोल दो, मैया खोल दो जे द्वारे की किबरिया, मैया खोल दो द्वारे की किबरिया, मैया खोल दो द्वारे की किबरिया।
1: देखो दोस्तों, जो कितना प्यारो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे दिनेश सोनी जी। आ दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे सुनते हैं अगले साथियों के गायब है गीत को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, माँ के चरणों में अर्जी कोको लगाएं। देखो कितना अच्छा जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रही थी राजा बद्रेली जी। अब दोस्तों आओ सुनते हैं अगले साथी इनके गाय भाई गीत को।

बिल्कुल दोस्तों, कायर उठो केसर उठो फूलन को लंगरवा कायर उठो। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे भैया कृष्णकांत कुशवाहा जी। अब दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनाते हैं अगले साथी इनके गाय भाई गीत को।

हो जा दयाल कृपाल महामाई आपकी वीर। देखो दोस्तों कितनों बढ़िया जो गीत अपन सब जनन ने सुनो, देवी गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया गोविंदास कुशवाहा जी। सो आओ दोस्तों गोविंदास भैया जी के गीत के बाद फिर से सुनते हैं अगले साथी इनकी गायब है गीत को।

बिल्कुल दोस्तों, मैया भक्त खड़े पुकारे दूर में हो माँ। देखो दोस्तों कितनों प्यारो जो भजन अपन सब जन ने सुनो, भजन को आनंद लो है। और दोस्तों ई भजन को जो गा रहे थे वे गा रहे थे किशोरी लाल कुशवाहा जी। अब दोस्तों ये गीत के बाद फिर से सुनते हैं अगले साथी इनके गायब है गीत।

देखो दोस्तों, जो कितना बढ़िया गीत अपन सब जनन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया मनीराम मंचला जी। और अब मनीराम भैया मंचला जी के ये गीत के बाद हम आप सब जन को बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम से अपने दोस्त माता दीन भैया को जाबे को समय हो गया है। सो दोस्तों, हमें दो ही कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात है कार्यक्रम में ए बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

कृष्ण भगवान हनुमान ने आई थी, तो भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे तो जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान। तो क्या बोले

0: शुभ कल। बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: नमस्कार सभी साथियों का, हम आज के इस कार्यक्रम सुपकल में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा,
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष।
1: यह कार्यक्रम रेडियो बुंदेलखंड और लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे।
2: और साथियों आपको बताते हुए ये बड़ी खुशी होती है कि जब हम किसी विषय पर विचार करते हैं और उस विचार को प्रस्तुत करने के लिए हमें कोई सहयोग करता है तो मन में बहुत खुशी होती है। खासतौर पर यदि देखा जाए बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोगों के लिए तो यहाँ पर जैविक खेती के लिए संभावनाएं तो बहुत ज्यादा है, लेकिन समस्या कहाँ पर आती है ये सबसे बड़ा सवाल रहता है।
1: साथियों हम सभी देख रहे हैं कि खेती करना कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आज जो हम खेती करते हैं इसमें लागत बहुत लगती है और फसल उत्पादन कम हो रहा है, क्योंकि जो हमारे किसान अपने खेतों में बीज डालते हैं, खाद डालते हैं और साल भर मेहनत करने के बाद भी किसान कर्ज में डूबा रहता है। आज के इस कार्यक्रम में हम उन आंकड़ों को लेकर बात करेंगे जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे किसान जैविक खेती क्यों नहीं करते, क्या कारण है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको ले चलते हैं बैरो भौजी के पास।
3: बहरो, बहरो, बहरो, बहरो, बहरो,
4: काय लाला का हो रहा, बड़े दिनन में दिखाई दे, और घरे सब ठीक है मोनी मोड़ा?
5: का करे भौजी, कछु ठीक नहीं है, सब बर्बाद हो रहा।
4: का होगा लाला जू, को मर गो?
5: अरे भौजी मर नहीं गा, मैं जा कह रहा कि सब बर्बाद होगा।
4: अच्छा जा कह रहे, हाँ सो का होगा वैसो?
5: भौजी कहीं देख ले जा, फसल ठीक हो नहीं रही, लगत बहुत ज्यादा लग रही।
6: हम का करें, बर्बाद हो गए।
4: काय लगत ज्यादा काय लग रही, और तुम्हारी फसल की पैदावार कम काय हो रही?
6: मुझे तो कछु समझ में नहीं आ रहा, इतने इतने बीज डाल रहे, महंगे महंगे दवाई भी दे रहे, बेर बेर दवाई दे रहे, लेकिन वह फसल सही नहीं हो रही। और संगे संगे काय से पूरे फसलन के लाने इतने उतने से कर्ज करके मैं पैसा लगा फसलन में, और अंत में जो देखत कि फसल की पैदावार कम हो, का करें हमें मुझे समझ में नहीं आ रहा।
4: लाला जू बात तो तुम्हारी सही है, हम समझ रहे तुम्हारी परेशानी को। अब देखो लाला जू, हम तो इसे ज्यादा कछु नहीं कह रहे, हम तुम्हें अपने दद्दा के पास ले चल रहे, बे कछु तरीका बताए।
5: राम राम दद्दा जू।
7: राम राम बेटा, राम राम, कैसो भगत चलवाते हैं, ठीक है के नहीं?
5: कछु ठीक नहीं है दद्दा, बहुत ही परेशान चल रहा है, और भौजी जा कह रही के दद्दा के पास चलो, सब चीजन को हल मिले। अब आप ही बताओ जाको समाधान।
7: कैसो समाधान, कौन सी बात है, काय दुखी हो रहा मोड़ा?
5: मुझे तो कछु समझ में नहीं आ रहा दद्दा, इतने महंगे महंगे बीज डाल रहे अपने खेतन में, लगत खूब ही लगा रहे, और इतने तो रोग लगत के साल भर लगत लगावे के बाद पैसा इतने उतने से उठा के कर्ज करत, और जो फायदा हो तो पूरे कर्जदार न चलो जात, का करें दद्दा?
7: अच्छा बेटा तो पहले जो बता, मोई उम्र कितनी खोज जे?
5: दद्दा जी हमें लगत लगभग तेरी उम्र 70 साल तो हो जाये।
7: अरे बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के हते, खूब दूध घी खाते और खूब डंड बैठ के लगाते और खूब ढोर बैल पालते, सो उनको गोबर निकलते जो सब वो खेतन में डालते, वो अपनी खेती करते मन से, और जो हम अपने घरे बीज रखते सो वही बीजन को करते इस्तेमाल, वे बहुते सो कम लगत लगती बेटा।
5: दद्दा जो तो बात तुमने सही बताई, लेकिन
7: अरे बेटा पहला मिट्टी की हालत बहुत अच्छी रहती और

0: उपजाऊ होती। तीन तीन साल तक हम खेत में जो गोबर को खाद डालते जिससे हमारी माटी खराब नहीं होती।
1: दद्दा जो तो बात सही कह रहा हूँ, लेकिन का करें दद्दा, हम जांच करावे के लाने होते होते गए हैंगे। हमने एक बार जो अधिकारी आते कृषि विभाग के उनसे भी कही थी, लेकिन वे कह रहे कहते सुविधा नहीं है, टीकमगढ़ चले जाओ। अब टीकमगढ़ कैसे ना, इतने दूर टीकमगढ़ है, 100 किलोमीटर, अब कैसे कराएं। और बेकत के जब तक जांच नहीं होंगे तब तक पता नहीं चलेते कि मिट्टी में कौन सी कमी हैगी।
0: अच्छा बेटा, जोन भ्रांति तुम्हारे मन में है, भाई भ्रांति और किसानन के मन में भी चल रही है।
2: बहरो, बहरो, बहरो,
3: साथियों, सुना आपने जिस तरह से लाला जी के मन में जो भ्रांतियां थी, ऐसी भ्रांतियां हमारे और भी किसानों के मन में चल रही होंगी। जानने के लिए चलते हैं समुदाय के पास, लेकिन एक ब्राम के बाद।
4: नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं आरजे आराधना, और आज बात करेंगे कि लोग जैविक खेती क्यों नहीं करते हैं, जैविक खेती ना करने का क्या कारण हो सकता है लोगों का। आइए हम जानते हैं, उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि जैविक खेती कैसे की जाती है और क्यों की जाती है। अभी जैविक खेती का बाजार ज्यादा बड़ा भी नहीं हुआ है, इसीलिए जैविक उत्पादन को बेचना कठिन काम हो जाता है। किसान उसी चीज की खेती करेगा जिसकी मांग बाजार में है और जिसका बाजार पहले से बना हुआ है, तथा जैविक उत्पाद की गुणवत्ता बहुत अच्छी होने के कारण इसकी कीमत ज्यादा होती है, जो हर वर्ग के लोग खरीद भी नहीं पाते हैं। हर वर्ग के लोग जैविक उत्पाद नहीं खरीदने का कारण किसान अपनी उपज को बेचने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण किसान की आय में कमी हो जाती है। वैसे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बेहतर कुछ भी नहीं है, लेकिन भारत के किसानों में जैविक खेती को लेकर अनुभव की कमी है, जिस कारण भारत में इसको जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन भी इसके कुछ कारण है, वो हम आपको बताते हैं। जैविक खेती करने में अधिक मेहनत लगती है और समय की बहुत अधिक खपत होती है, हमेशा निगरानी करनी पड़ती है, इस कारण भी लोग जैविक खेती करना कम पसंद करते हैं। अकार्बनिक खेती की तुलना में उपज कम है, जानकारी की कमी भी लोगों में है, जागरूकता न होने के कारण भी जैविक खेती लोग नहीं करते हैं। आर्थिक उपज कम होगी ये भी लोगों में डर रहता है। जैव उर्वरकों और जैव कीटनाशकों की अच्छी आपूर्ति की आवश्यकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, जब तक के लिए बाय बाय।
5: मेरा नाम ज्ञान सिंह यादव है, मैं ग्राम रायपुरा जिला नवाड़ी मध्य प्रदेश से हूँ। एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो मिट्टी परीक्षण की जो मशीनरी है वो ठीक नहीं है या खराब है, जिस वजह से मिट्टी परीक्षण नहीं हो पा रही। दूसरा, किसानों से इतने तरीके से नहीं समझाई कि मिट्टी परीक्षण होना चाहिए और क्यों नहीं हो रही, किसानों को उतनी समझाइश नहीं दी गई, उतनी सुविधाएं नहीं दी गई।
6: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए, जीवन बचाओ।
7: जैविक खेती का नहीं करत, जैविक खेती के बारे में पता ही नहीं है। अच्छा, जो जानकारी है, अपन फसल बोवे से पहले मिट्टी की जांच परीक्षण होते है, मिट्टी की जांच करवा थे आप?
8: नहीं करवाई,
7: का कारण है कि जानवर चाहते हैं?
9: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
10: राम बल्लभ जी, आप ऐसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार का ऐसा हो रहा है तो कि आदमी मिट्टी की जांच नहीं करा पा?
11: देखो, सब में पहली बात तो मनीष भैया आपने बात पूछी है, और शायद आपको जानकारी हुई है कि अपने नव निर्मित जिला निवाड़ी में अब मिट्टी परीक्षण केंद्र की हमारे हिसाब से, जानकारी के हिसाब से व्यवस्था नहीं है, और इके लाने अपने किसान भैया को टीकमगढ़, जो कि अपने यहाँ से अगर निवाड़ी से बात करी जाए तो 70-80 किलोमीटर दूर पड़ा थे, तो अब इन बातन में किसान थोड़ा पीछे हो जाता है। इतना समय नहीं है कि अपना समय निकाल के मिट्टी परीक्षण की पहले नमूना देवे जाए और फिर उसके बाद उसको रिजल्ट का है या का कमी है उसकी देखभेख हो, परिणाम देखभेख लाने फिर टीकमगढ़ जाए, तो इस वजह से किसान भैया को सुविधा नहीं मिल पा रही है।
6: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है। वृक्ष लगाइए, जीवन बचाइए।
3: साथियों, अभी हमने जाना कि किसानों के मन में क्या सवाल चल रहे हैं, और उनका मानना है कि हम मिट्टी परीक्षण कराते हैं पर मशीन खराब होने के कारण जांच नहीं मिल पाती है। तो इन सारी समस्याओं को अभी हम दूर करते हैं, इन भ्रांतियों को सीधा ले चलते हैं विषय विशेषज्ञ के पास और जानते हैं उन आंकड़ों को कि निवाड़ी और झांसी जिले के क्या आंकड़े हैं जैविक खेती पर रिसर्च डाटा के अनुसार। तो साथियों, आइए आपको ले चलते हैं डॉक्टर डी के नायक जी के पास, जो SADO के पद पर कार्यरत हैं।
7: साथियों, हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे सर SADO सर डी के नायक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे ही सवालों के जवाबों को पूछते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि अगर निवाड़ी जिले की अगर बात करें तो जैविक खेती के सर आंकड़े क्या कहते हैं सर?
12: ये जहाँ तक आंकड़ों की बात है, अधिकृत आंकड़े तो जैविक खेती के वो ही हो सकते हैं जिनका जैविक खेती में पंजीयन हो, जिनका जैविक प्रमाणीकरण संस्था है मध्य प्रदेश की
7: जी,
12: उसके द्वारा जो पंजीकृत कृषक होंगे उनके यहाँ पैदा हो रही जिन्स को ही जैविक खेती कहा जा सकता है वैधानिक तौर पे।
7: जी जी जी जी।
12: तो पंजीयन में तो यहाँ के अपने जो किसान हैं वो रुचि नहीं ले रहे हैं
7: जी,
12: या यूं कहिए कि उन्होंने पंजीयन नहीं कराए।
7: अच्छा अच्छा अच्छा।
12: मगर हम व्यवहारिक पहलू की बात करें
7: जी,
12: तो निवाड़ी जिले के अधिकांश फसलें जैविक खेती के आधार पर ही तैयार हो रही। मसलन हम बात करें सब्जियों की, तो सब्जियां सारी की सारी गैर जैविक हैं, सारी सब्जियां दवाई से तैयार हो रही हैं। और अगर हम बात करें गेहूं की, चना की, मटर की, ये सारी फसलें हैं ना, जो यहाँ तक के आपका उड़द है, मूंगफली है, ये सारी चीजें गैर जैविक तरीके से किसान उगा रहे हैं। हालांकि अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो हमारा जो रासायनिक उर्वरक का उपयोग है और कीटनाशक दवाओं का उपयोग है वो पंजाब की तुलना में, हरियाणा की तुलना में बहुत ही कम है। लेकिन और चीजें, इन सब्जियों और फसलों के अलावा जो चीजें पैदा हो रही हैं वो सब जैविक। जैसे हम उदाहरण के लिए कहें, नींबू है अपने यहाँ, जितना नींबू पैदा हो रहा है वो जैविक है
7: जी।
12: हमारा अदरक पैदा हो रहा है वो पूरा जैविक है
7: जी।
12: हमारे अमरूद, आम, आंवला, करौंदा, ये सारी चीजें हमारी जो पैदा हो रही हैं वो जैविक तरीके से ही हो रही है। यहाँ पे जैविक खेती की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन हमारे किसान अभी उतने जागरूक नहीं हो पाए हैं कि वो जैविक खेती का लाभ उठा सके। जैविक खेती एक्चुअली क्या है कि ये कोई आभूषण नहीं है, ये कोई शान शौकत नहीं है
7: जी सर,
12: ये तो दो पैसे से जुड़ा सवाल है
7: जी सर, जी सर।
12: अगर अगर हमारे किसान भाई अगर पंजीयन करा लेते हैं, उसको पंजीकृत कर लेते हैं
7: जी,
12: तो देश के विभिन्न बाजारों में हमारे यहाँ की जो चीजें जैविक तरीके से पैदा हो रही हैं उनकी जोड़ी कीमत उनको मिल सकती है किसान।
7: बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर जी।
12: सारी चीजें यहाँ पे जैविक तरीके से पैदा हो सकती हैं। जैसे मूंगफली में हम कुछ नहीं डाल रहे, मूंगफली में केवल हम नीदा नाशक डाल रहे हैं, तो नीदा नाशक को हम खत्म कर सकते हैं। नीदा नाशक के लिए बुवाई का तरीका बदल दें हम, निदाई का तरीका बदल दें अगर, तिल का उपयोग करने लगे और उसमें जो वीडर मशीन आ गई है उस वीडर से हम निदाई कर दें अगर, तो मूंगफली हमारे प्योर जैविक तैयार होगी। यहाँ जो देश में कहीं नहीं हो रही है वो यहाँ पे हो रही है, बहुत अच्छी संभावना है
7: जी सर। और सर, हमारा आखिरी सवाल है और ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने गांव के लोगों से जब पूछा है कि यहाँ पर जो मिट्टी परीक्षण जो किया जाता है, सबसे पहले मिट्टी की जाँच की जाती है, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर मशीन सही नहीं है और वहाँ टीकमगढ़ भेजना पड़ता है और वो रिजल्ट हमें काफी दिनों बाद हमें प्राप्त होता है, तो ये समस्या है उनके लिए सर, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर?
12: अभी हमारे जिले में दो प्रयोगशाला, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला तैयार हो गई है
7: जी,
12: और दोनों प्रयोगशाला में मशीनें भी आ गई है, सब हो गया है, केवल यहाँ पे अभी स्टाफ आना शेष है
7: जी सर।
12: और जैसे ही स्टाफ का यहाँ पे नियुक्ति हो जाती है
7: जी सर,
12: तो प्रयोगशालाएं निवाड़ी और प्रतिपुर दोनों ही जगह तैयार हो चालू हो जाएंगे।
7: एक चीज और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए, खासतौर पर अगर जैविक खेती की सर बात करें, तो प्रशिक्षण के लिए क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं सर निवाड़ी में?
12: प्रशिक्षण के लिए हम अभी, हमारा

0: मई को गुजरात के मेंटर आए हुए थे हमारे, तो उनने जैविक खेती पर प्रशिक्षण दिया था, प्राकृतिक खेती पर एक प्रशिक्षण दिया था। उसमें कोई 100 किसान से अधिक संख्या में लोग आए थे, हमने मंडी में रखा था प्रोग्राम। और अगर कोई स्पेसिफिक अगर कोई किसान चाहे तो वो हमारे कार्यालय में आकर के अपना नाम दे दें, उनको हम उनके लिए हम क्या करेंगे कि उनको नौगांव हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर भेज देंगे सरकारी खर्चे पर।
1: बहुत बढ़िया,
0: उनका आने जाने का किराया भी मिल जाएगा, वहाँ भोजन रुकने की व्यवस्था है, दो तीन दिन वहाँ पे उनको प्रशिक्षण भी दिलवा देंगे।
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बातचीत आपने बताई है, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: आपको भी धन्यवाद।
2: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
3: साथियों अभी हमने जाना निवाड़ी जिले के आंकड़ों को, इन आंकड़ों से इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि अभी सिर्फ 20% ही किसान जैविक खेती करते हैं। अगर झांसी जिले की बात करें तो झांसी के कुछ गांव में जैविक खेती करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ अगर झांसी की बात करें तो झांसी में KBK और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी है, तो वहाँ पर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी है। और अगर निवाड़ी जिले की बात करें तो निवाड़ी अभी भी एक 52वां जिला बना हुआ है और सभी चीजों की व्यवस्था के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, ऐसा विषय विशेषज्ञ मानते हैं, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं संदेह है या फिर जानकारी का अभाव है। इन सारी बातों को लेकर हम विषय विशेषज्ञ के पास चलते हैं, वही इन समुदाय के सवालों के जवाब देंगे और साथ में जानेंगे क्या झांसी जिले के लिए किसानों को जानकारी और मिट्टी परीक्षण जैसी सुविधा मिल सकती है। आइए जानते हैं डॉक्टर संतोष पांडे जी से।
4: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
5: मैं डॉक्टर संतोष पांडे सहायक आचार्य कृषि विज्ञान संस्थान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में सस्य वैज्ञानिक हूँ। देखिए जैविक खेती बहुत अच्छी चीज है
6: जी,
5: लेकिन अब ये बताइए देसी घी खाने वाले कितने लोग? देसी घी तो खाने वाले बहुत कम है ना
6: जी सर।
5: 90% लोगों का जो जीविकोपार्जन है आम जनता वो जो है खाती क्या है, रिफाइंड और जो है उससे जिंदगी जी रही है। तो जस्ट लाइक जैविक खेती क्या है कि बहुत अच्छी चीज है
6: जी।
5: खेती की उर्वरा शक्ति को भी मेंटेन करती है, सस्ती भी है
6: जी।
5: जो अन्य तकनीक है केमिकल फर्टिलाइजर से और तमाम जो भी खेती की जाती है उससे सस्ती भी है जैविक खेती
6: जी।
5: क्योंकि जैविक खेती में भूमि की उर्वरा शक्ति को हमेशा बरकरार रखा जाता है
6: जी।
5: उसमें किसी तरह का हरासमेंट नहीं किया जाता
6: जी।
5: जबकि वहीं हम रासायनिक खेती करते हैं तो उसमें तरह तरह के हम केमिकल्स डालते हैं जिसमें पर्टिकुलर पोषक तत्व तो हमारे बढ़ जाते हैं लेकिन और पोषक तत्वों का हरासमेंट हो जाता है। फॉर सपोज दैट यूरिया हमने डाला, यूरिया डालने से हमें खेत में नाइट्रोजन तो भरपूर हो गया लेकिन अन्य तत्व तो नहीं मिले। वहीं हम अगर गोबर की खाद डालते हैं जो जैविक खेती का प्रमुख आस्पेक्ट है या प्रमुख जो है चीज है, जैविक खेती में आप गोबर की खाद हम डालेंगे हमें नाइट्रोजन मिल जाएगा 0.5%, उसके साथ हमें नाइट्रोजन मिल जाए फास्फोरस मिल जाएगा, फास्फोरस के साथ पोटास मिल जाएंगे और सारे आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हमारे FYM से रिक्वायरमेंट पूर्ति होगी। इसके साथ साथ जो भूमि के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है ह्यूमस, उसमें जो है उसके जो पोर डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, कार्बन परसेंटेज बढ़ जाएंगे जो कि भूमि के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए ऑर्गेनिक खेती तो बहुत अच्छी है लेकिन ऑर्गेनिक खेती करने के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत है, कम से कम 5 साल 6 साल का समय लगता है जिसमें कि आपको खेत को जो है बढ़िया सा उपजाऊ बनाना पड़ेगा। और आप इसका उदाहरण आप इस तरह आप इस समझ सकते हैं कि जब हरित क्रांति की बात हुई, जब हमारे खेत में पहले जो था आज के 50 साल पहले की बात करें, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे पास खेत बहुत थे लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन था बहुत कम था। लेकिन आज के मौजूदा परिवेश में क्या है कि आज हमारा प्रोडक्शन कई गुना ज्यादा बढ़ गया, आज को गोदामों में जो है अनाज सड़ रहे हैं और खेती हमारी कम हो गई। जो खेत थे लोगों ने खेत में ही अब घर बना लिए और खेती कम हो जा रही, लेकिन आज प्रोडक्शन हमने कई गुना बढ़ा लिया इसलिए चीजें, तो टेक्नोलॉजी डे बाय डे अपडेट हो रही है। तो जैविक खेती भी अपडेट हो रही, जैविक खेती में हमको धैर्य रखना पड़ेगा और आज हमें पुरानी कल्चर पे जो है

0: लौटना पड़ेगा और जैविक खेती के साथ साथ हम दोनों मिक्सिंग और खेती करके करें तो बहुत अच्छा है।
1: जी सर, सर आपके आंकड़े क्या कहते हैं कि यहाँ पर कितने प्रतिशत जैविक खेती लोग करने लगे हैं?
0: मेरे हिसाब से यहाँ 90% जो है जैविक खेती बुंदेलखंड में बाई डिफॉल्ट जैविक खेती 90% है। अच्छा। क्यों है वो भी मैं सिद्ध कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसानों की आय बहुत कम, जागरूकता है, किसान जो है फर्टिलाइजर पर कम विश्वास करते हैं क्योंकि उनके जेब में पैसा नहीं, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल वही कर पाता है जिसकी जेब में पैसा होता है। क्योंकि बुंदेलखंड में गरीबी बहुत है, पैसे का वेरिएशन यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंट है, यहाँ जिनके पास आय है बहुत ज्यादा आय है, जिनके पास नहीं है तो खाने, और यहाँ लघु किसान बहुत ज्यादा है।
1: बिल्कुल,
0: तो इसलिए यहाँ लोग जो है फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है बुंदेलखंड में।
1: जी सर, ऑर्गेनिक की अगर बात करें तो ये जैविक खेती की अगर बात करें तो कितने प्रकार की होती है और किस तरीके से कर सकते हैं?
0: जैविक खेती का कोई प्रकार विशेष नहीं है।
1: अच्छा अच्छा,
0: जैविक खेती सिर्फ जैविक खेती है।
1: जी,
0: जैविक खेती में अभी आजकल एक नया टर्मोलॉजी आ गई है, नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग में क्या है कि जो हमारे बाप दादा पहले पुरानी तरीके से पुरानी पद्धतियों पर पुराने व्यवस्थाओं को करते थे, जैसे नीम की कहते हैं ना कि पेड़ के नीचे जो है क्या होता है, जो पत्तियां गिरती हैं, न्यूट्रिएंट्स गिरते हैं, उनसे जो है वो जगह क्या होती है, फर्टाइल हो जाती है। गाय का गोबर जहाँ पड़ेगा, मूत्र जहाँ पड़ेगा, वहाँ उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। तो अब नेचुरल फार्मिंग की बात उसमें आ जा रही, ये जैविक की एक रूप है।
1: जी सर,
0: और नेचुरल को जो हम नेचर है कि देसी गाय पाल लें, उससे हम जीवामृत बना लें, घनामृत बना लें, उससे जो है हम खेती करें, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन क्या मैंने बताया ना आपसे उदाहरण दे कि अगर देसी घी और रिफाइंड की बात है, डिमांड की जरूरत है, नो डाउट जो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं भाई, समय का चक्र है, चलता रहता है। कभी रासायनिक खेती, हमको उपज बढ़ानी थी, लोगों का पेट भरना था, इसलिए हमारी जरूरत थी कि हमें केमिकल फार्मिंग करनी थी, इसलिए हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया। आज हमारे पास अनाज बहुत ज्यादा हो गया है, अब हमें ये लगता है हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत उच्च हो गई है, तो हमें ये लगता है कि जीवन के प्रति मोह होना चाहिए और केमिकल का इस्तेमाल न कम से कम करें जिससे हम लॉन्ग लाइफ जी सके।
1: बिल्कुल सर,
0: तो इसलिए जैविक खेती तो बहुत अच्छी है ही है।
1: जी सर,
0: और जैविक खेती बुंदेलखंड में तो मैंने आपसे बताया कि 80 से 90% जो है जैविक खेती है। आप सभी लोग कभी भी किसी तरह की खेती में कोई दिक्कत हो, आप लोग सीधे मेरा कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, 94-157-18-210 है, आप सीधे हमसे अपनी समस्याओं को सुन सकते हैं, जान सकते हैं, और हम आपकी समस्याओं का निराकरण करें। लेकिन ये
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आरजे आराधना, और आज जानते हैं कि मृदा परीक्षण से क्या लाभ हो सकते हैं। मिट्टी की जांच रिपोर्ट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए उचित उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए सिफारिश समय मदद कर सकती है। मिट्टी की जांच के माध्यम से फसल की सूक्ष्म पोषक आवश्यकताओं का निर्धारण भी किया जा सकता है। यह एक उपयोगी पोषक तत्वों के समुचित प्रबंधन में सहायक है। उर्वरकों की सटीक मात्रा को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की विषाक्तता को नियंत्रित किया जा सकता है। मिट्टी की जांच रिपोर्ट के माध्यम से फसलों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता को वैज्ञानिक रूप से किया जा सकेगा। इसलिए हमें लगता है कि मिट्टी की जांच करना आवश्यक है और बहुत ज्यादा आवश्यक है। खेत में लगातार रासायनिक पदार्थों और कीटनाशकों के प्रयोग के कारण खेत की मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। कई वर्षों के अनुभव के बाद भी किसानों के लिए मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का अंदाजा लगाना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में फसलों की पैदावार पर प्रभाव पड़ता है। उच्च गुणवत्ता की फसल और अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए मिट्टी में मौजूद तत्वों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। मिट्टी में कई पोषक तत्व होते हैं। पौधों को अपने जीवन चक्र में कई पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मुख्य तत्वों जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सूक्ष्म तत्वों जैसे जस्ता, मैग्नीज, तांबा, लोह, बोरोन, मैग्नीज, तांबा, लोह, बोरोन और क्लोरीन की संतुलित मात्रा से अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। मिट्टी में इन तत्वों की कमी के कारण मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम होने लगती है। मिट्टी जांचने के क्या फायदे हो सकते हैं? मिट्टी की जांच क्यों जरूरी हो?

0: सकती है। तो मिट्टी की जांच कराकर किसान खेत की मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आदि तत्वों के साथ लवणों की मात्रा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे मिट्टी के पीएच स्तर का भी पता चलता है। जी हाँ, मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों के अनुसार फसलों का चयन करने से अधिक पैदावार होती है। मिट्टी में जिन पोषक तत्वों की कमी है उन्हें पूरा करके हम मिट्टी को उपजाऊ क्षमता बढ़ा सकते हैं। दीजिए इजाजत, अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
1: एक बार फिर से आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम शुभ कल। अभी हमने सुना डॉक्टर संतोष पांडे जी को, जिन्होंने हमें बताया कि झांसी जिले में तो जैविक खेती हमारे किसान साथी करने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे किसानों को प्रशिक्षण की सुविधा है
2: और साथ साथ में केवीके जैसी संस्था है जहाँ पर जैविक खेती को लेकर प्रयास कर रही है। मगर यदि निवाड़ी जिले की बात करें तो वहाँ पर इस तरीके की सुविधा नहीं है, क्योंकि नया जिला बना हुआ है और इन सुविधाओं को लाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। और यही कारण है कि लोग जैविक खेती करने के लिए कहीं ना कहीं उनके मन में डर बना रहता है।
1: अभी तो सिर्फ इस कार्यक्रम में सिर्फ आंकड़ों पर नजर डाली है, हमारे साथियों के बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे जो आपके मन में चल रहे थे। लेकिन फिर भी हमारे साथियों के मन में अभी भी कोई सवाल है और उसका जवाब आपको नहीं मिला है, तो वे हमें फोन के माध्यम से भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है
2: 92 19 20 77 49। तो श्रोताओं, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर आप हमें फोन के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। यदि हमारे श्रोता साथी चिट्ठी पत्रिका के माध्यम से अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा।
1: चलिए साथियों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम में सवालों का। जी हाँ, आज का हमारा सवाल है श्रोताओं, मिट्टी की जांच नहीं कराने का मुख्य कारण क्या है? सवाल एक बार फिर से सुन ले, मिट्टी की जांच ना कराने का मुख्य कारण क्या है? अब श्रोताओं, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम से विदा लेने का। कार्यक्रम हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी आरजे वर्षा
2: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत।
1: नमस्कार।
3: शुभ कल, बदलती जलवायु के लिए तैयार हूँ।

0: साथियों नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष।
0: साथियों आप तो जानते हैं कि हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के अंतर्गत हम समय समय पर अलग अलग तरह की जानकारी आप सभी के लिए लेकर हाजिर होते हैं। चाहे बात करें हम रोजगार सूचनाओं की या फिर व्यक्तित्व विकास की या फिर सफल कहानियों की या फिर छोटा काम बड़ा मुनाफा की, तो जैसा समय होता है वैसा काम हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो बिल्कुल साथियों आप दिल थाम कर बैठ जाइए और अपने कानों को खोल कर रखिए क्योंकि हम आपके लिए बेहद जानकारी लेकर आए हैं और बेहद जरूरी भी है ये जानकारी। तो आइए हम जानते हैं कि हम अपना व्यक्तित्व विकास किस तरह से निखार सकते हैं, क्या क्या टिप्स होती हैं जिनको अपना कर हम एक बेहतरीन पर्सनालिटी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि यदि हमारा युवा साथी कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसका व्यक्तित्व ही उसकी नौकरी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि व्यक्तित्व विकास निखारना यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, ये एक युवा साथियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है और खासतौर पर समाज के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में व्यक्तित्व विकास कैसे करें इस पर चर्चा करेंगे और कुछ मूल मंत्र जो रहते हैं उसे भी हम आपको बताएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से।
0: साथियों अगर हम व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं तो कैसे निखारें, सबसे

0: पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आता है, तो उसके लिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब हम जागरूक होंगे तभी हमारे अंदर व्यक्तित्व विकास होगा, और साथ में हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए, हमें अपने ऊपर विश्वास भी होना चाहिए कि हम इस काम के लिए परफेक्ट हैं। साथियों, 21वीं सदी में सफलता पाने का ये जो मूल मंत्र होता है, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसके पास कुछ खास चीजें हैं जैसे कॉन्फिडेंट, लुक्स, लैंग्वेज पर कमांड और कुछ खास स्किल्स हैं, तो वो 21वीं सदी का सफल व्यक्ति माना जाता है, भले ही वो किसी भी मुकाम से मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। अगर उसके पास ये गुण हैं तो वो मंजिल तक पहुंच ही जाता है। आज के दौर में कामयाबी का मूल मंत्र है व्यक्तित्व विकास। इसके नाम से ही कई लोग लाखों कमा लेते हैं। हर गली मोहल्ले में व्यक्तित्व विकास की क्लासों का बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ होता है कि आप आइए और अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारेंगे, इसके लिए आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि व्यक्तित्व विकास कैसे कर सकते हैं, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं, पढ़ने की आदत बनाएं, सुनने की आदत डालें, बॉडी लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चेहरे के हाव भाव पर भी नियंत्रित रखिए, दूसरों को महत्व दीजिए और अपना व्यू जरूर दें, इंटरेस्ट डेवलप करें, नकारात्मक से बचें। साथियों, नकारात्मक जो शब्द होता है ये वाकई में वो सारी चीजें देखता है जो हम सोचते हैं, यानी कि अगर हम कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हैं तो नकारात्मक चीजें भी हमारे पास ही चली आती हैं, पीछे पीछे चली आती हैं, और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये घर कर जाती है कि ये आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इन सभी चीजों से बचना है, हमें नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उससे आपको दूर रहना है, और सिर्फ सकारात्मक चीजों को सोचना है, समझना है और करना भी है।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा। और जैसे कि वर्षा ने बताया है कि व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है आत्मविश्वास को बढ़ाए। दुनिया के आधे काम तो एक शब्द से जुड़े होते हैं। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। आत्मविश्वास की ताकत आपके चेहरे से झलकती है, जो आपकी छवि को निखारती है। अगर किसी कारण से आप किन्हीं चीजों से डर भी रहे हैं तो आप कभी उसे अपने चेहरे पर ना आने दें। हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा अपने चेहरे पर निडरता का भाव रखें, ऐसा दिखाएं कि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच एक पतली लाइन होती है, उस लाइन को कभी क्रॉस ना करें, वरना आपकी छवि बहुत खराब हो जाती है। आत्मविश्वास में कमी है तो एक मौका मिलता है, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो मौका बिल्कुल नहीं मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा है मनीष जी आपने, क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना वो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं गलत साबित कर देता है। तो आगे हम जहां पर व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं वहां पर पढ़ने की आदत बनाएं, ये बात भी बहुत अहम भाग है इसका और बहुत अहम रोल भी ये निभाती है।
1: जैसे कि पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है और वाक शक्ति बढ़ती है, मतलब भाषा प्रभावशाली होती है। पढ़ने से सामान्य ज्ञान बढ़ता है, जिससे आपका प्रभाव सामने वाले पर अच्छा पड़ता है, साथ ही आपके व्यक्तित्व का विकास भी होता है। अगर आपका ज्ञान अच्छा होगा तो आपका खुद में आत्मविश्वास महसूस होगा। पढ़ने से इंसान सीखता है और सीखने की किसी भी वस्तु से व्यक्तित्व का विकास होता है, और पढ़ने से व्यक्ति अपडेट भी रहता है, उसे वर्तमान में क्या चल रहा है पता होता है। इससे व्यक्ति की कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, साथ में उसको कई लोगों के बीच नाम भी मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, पढ़ने की आदत दोस्तों ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन आजकल जो हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, आज की 21वीं सदी में लोग किताबों से कम, खास तौर से हमारे युवा साथी किताबों से कम मोबाइलों से ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी और आपको पढ़ने की यानी किताबें पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, जिससे आपके पास बहुत सारा ज्ञान का भंडार होगा और आपसे अगर कोई सवाल करता है तो आप उसका तत्कालीन उसका जवाब दे सकते हैं, ताकि आपको याद रहेगा कि ये सवाल मैंने कहीं पढ़ा था और इस सवाल का सही आंसर ये हो सकता है। इसलिए किताबों को अपना

0: सामने वाला जब बोलना शुरू करता है तो हम उसकी बात को काट देते हैं, हम सुनना पसंद नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत आदत होती है। तो हमें क्या करना है, सुनने की आदत डालनी है। सामने वाला क्या बोल रहा है उसे ध्यान पूर्वक से सुने।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि सुनने की आदत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है और व्यक्तित्व के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और यदि किसी आप जगह जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं या नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं तो सुनने की आदत आप डालिएगा। बॉस क्या कह रहा है या आपका जो साथी है वो क्या कह रहा है, आपको पता चला कि आपका साथी आपको अच्छी अच्छी चीजें बता रहा है, ज्ञान दे रहा है और आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हमें क्या, हमें तो ये सब आता है, तो ये सारी चीजें आपके व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं रहती हैं। साथियों, आगे भी हम इस कार्यक्रम में बॉडी लैंग्वेज पर क्या काम करना चाहिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे, चेहरे के भाव को कैसे नियंत्रण कर सके इस पर भी महत्वपूर्ण बात बताएंगे, दूसरों को महत्व दें ये भी बहुत जरूरी रहता है, अपना व्यू जरूर दें, इंटरेस्ट डेवलप करें, नकारात्मक सोच से बचें, ये सारी बातों को हम सुनेंगे कुछ देर बाद, यानी सुनते यहाँ पर इस गीत को, और गीत के बाद फिर लौटेंगे और व्यक्तित्व विकास के जो महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहे हैं उस पर चर्चा होगी। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: परिवार।
1: और कहने लगी कि अगर मैं होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी, कहने लगी

0: नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और साथियों, हम होंगे कामयाब के अंतर्गत हम जान रहे हैं व्यक्तित्व विकास को लेकर बात कर रहे हैं।
1: तो व्यक्तित्व विकास का अगला पन्ना आता है, यानी अगली बात आती है, वो बॉडी लैंग्वेज पर कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के बोलने उठने बैठने के तरीके से उसके व्यक्तित्व की झलक दिख जाती है। इस दिशा में खुद को जागरूक बनाएं, पहले खुद में झांकें और अपनी गलतियों का अवलोकन करें, फिर उन्हें सुधारें। क्षेत्रीय बोली कई बार आपके बोलने की स्टाइल को प्रभावित करती है। जैसे जो लोग अपने गांव में खड़ी बोली बोलते हैं, उनकी इंग्लिश या हिंदी में उसकी ट्यून आ जाती है, जो कि आपके व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव डालती है। अतः ऐसी कमियों को

0: पहचाने एवं उसको सुधार करें, इससे आपके आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। अपने आप को सीमित दायरे से बाहर निकालना भी व्यक्तित्व विकास का एक हिस्सा है।
1: बिल्कुल साथियों, जैसे कि आप कई बार जानते हैं, आपके खाने का तरीका बदलें, घर में जैसे चाहे वैसे रहें, लेकिन बाहर ध्यान से रखें। जैसे आप होटल गए हैं, सभी ने वेज ऑर्डर किया है, तो आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं तो करें, सभी के बीच नॉन वेज ऑर्डर ना करें। अगर सब नॉन वेज खा रहे हैं तो अलग बात है, क्योंकि आप नॉन वेज नहीं खाते हैं, तब आप वेज ऑर्डर कर सकते हैं। खाते वक्त आवाज ना करें, बोले ना, और सभी का भोजन खत्म हो उसका वेट करें, तुरंत हाथ धोकर ना बैठ जाएं। ये सभी पॉइंट डाइनिंग मैनर्स के अंतर्गत आते हैं। इनको सुधार करना आपके लिए बेहद जरूरी होगा, जिससे आपका विकास होगा। उठने बैठने का तरीका सही रखें, घर में किसी के आने पर खड़े हो जाएं और उनका वेलकम करें, यानी स्वागत करें, ना कि बैठे रहें और अथवा लेटे रहें। कितना भी थके क्यों ना हो, किसी गेस्ट के आने पर उनसे बिना पूछे ना सोएं। कुछ भी खाने से पहले अगर आपके साथ कोई है तो पहले उनसे पूछे। यह सभी बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन यह सभी आपकी छवि को निखारते हैं, आपकी व्यक्तित्व विकास में सहायता करते हैं। अपने लुक्स पर भी ध्यान दें, जैसे जो कपड़े आप पर अच्छे लगते हैं वही पहने। जगह एवं ओकेजन देखकर ही फैशन करें, आपकी हाइट, हेल्थ एवं बॉडी कलर के हिसाब से ही कपड़े पहने, इससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता है। और अगर आपको इन बातों की समझ होगी तो लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको लग रही होंगी कि ये तो बेफुजूली बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके व्यक्तित्व निखारने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। अगली बात आती है कि आपके चेहरे के भाव को आप नियंत्रण रखें। किसी से भी मुस्कुराकर मिले, भले आपका मूड खराब हो, आप परेशान हो, लेकिन इसका एहसास किसी को ना होने दें। इससे आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, आपको लोग पसंद करते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं। कभी कभी हमें किन्हीं बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो आपके चेहरे पर दिखने लगता है। कोई बात बुरी लगने पर आप हमारे चेहरे पर दिखने लगता है, हाव भाव दिखने लगता है, आपके व्यक्तित्व को गलत तरह से सबके सामने रखते हैं। इसलिए अपने भावों को नियंत्रण करें। एक्सप्रेशन या भाव भी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सहायक होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने, कई सारे लोग होते हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने भाव को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जो कि उनके लिए और सामने वाले के लिए भी कभी कभी बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित होता है। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी बॉडी की हर एक चीज पर कंट्रोल होना अति आवश्यक होता है। हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज हमें कहाँ बोलनी है, कौन नहीं बोलनी है, कब हमें गुस्सा करना है, कब गुस्सा नहीं करना है। लेकिन कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति का गुस्से पर कंट्रोल नहीं हो सकता, वो दुनिया में किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इस बात को आप याद रखिए और हमेशा अपने गुस्से को नियंत्रित रखिए।
0: अगली बात आती है कि दूसरों को महत्व दें, क्योंकि यह एक जरूरी पॉइंट भी है। इसे एक उदाहरण से समझें। अगर आपके घर में शादी है जिसमें कई रस्में होती हैं, जैसे कि हल्दी की रस्म होती है, बहुत सारी रस्म होती है वगैरह वगैरह, इन रस्मों में अपनों की जरूरत होती है, जहां आपको हमेशा दूसरों को आगे करना चाहिए। ये नहीं कि आप आगे आ जाए और दूसरों को पीछे रहने दें, नहीं, आपको दूसरों को आगे करना चाहिए। अपने आप को एवं घर के लोगों के अलावा अतिथियों को पहले शामिल करना चाहिए। इससे जैसे फुगा फूफा भाई, मामा माई भाई और जीजा जिज्जी भाई, इन्हों तो पहले ही आगे कर दो जाके, ना तो परेशान हो जाओगे। तो ये सारी हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि आप अतिथि आपके घर में है तो उनको यदि किसी रस्म में शामिल हो रहे हैं तो उनको सबसे पहले आगे करें। इससे भी आपका व्यक्तित्व सभी की नजरों में अच्छा होता है और ऐसा ही व्यवहार हर जगह होना चाहिए।

0: लिए यह पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी रहते हैं। इससे आपको लोग व्यवहारिक समझते हैं, जो कि सामाजिक दृष्टि से बहुत मायने रखता है।
1: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने, क्योंकि कई सारे ऐसे मौके होते हैं जब हम घर में दोस्तों को, रिश्तेदारों को और कई सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, लेकिन हम खुशी के मारे हम ये भूल जाते हैं कि हमने किसी को इनवाइट भी किया था, और सारी फोटो में या सारी रस्मों में हम अपने ही परिवार के लोग, अपने ही घर के लोगों को शामिल करते हैं, उन लोगों के बारे में हम सोचते भी नहीं है। या फिर यूं कह लीजिए कि कुछ बुजुर्ग हमारे रिलेशन वाले होते हैं, उनको भी हम कहीं ना कहीं साइड में ही छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अरे वो तो बुजुर्ग हैं, वो क्या समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, फीलिंग उन्हें भी होती है, उनको भी लगता है कि भाई हम इतने पुराने हैं, घर के बड़े हैं, रिश्तेदारी में भी बड़े हैं, लेकिन हमें पूछा नहीं है। तो ये आपकी एक पर्सनालिटी को दिखाता है, आपके व्यक्तित्व को दिखाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। इसलिए हमेशा अपने से पहले अपने जो बुलाए हैं उन लोगों का सम्मान करें, उन लोगों को महत्व दें। अब बारी आती है दोस्तों, अपना व्यू जरूर दें। आपने कई बार अपने पारिवारिक मामले या ऑफिशियल मामलों में ठीक से सुनने के बाद हर बात पर अपना दृष्टिकोण जरूर सामने रखें। बस ऐसा करते वक्त पोलाइट शब्दों का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे, आपकी बात से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। सभी को ध्यान में रखते हुए बात करें। अगर सही शब्द एवं सही तरीके से बात कहेंगे तो किसी के विरोध में कहने पर भी उसे बुरा नहीं लगेगा, अपितु वो आपको समझने की कोशिश करेगा। इसके में बहुत सहायक होते हैं, इनसे आप एक भीड़ से अलग छवि बनाते हैं। तो कभी भी आपको लगे कोई मामला हो रहा है, कोई डिसीजन आपके परिवार में या आपके ऑफिस में या आपकी क्लास में लिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो, तो अपना व्यू आप जरूर दें। आपकी जो भी राय है, जो भी प्रतिक्रिया है, आप उनको जरूर बताएं। क्या होगा, उनको पसंद नहीं आएगा आपका सुझाव, लेकिन सुझाव आपको जरूर देना है, जैसे आप हमारे कार्यक्रम का सुझाव देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और कुछ बातें और बची हुई हैं, जैसे कि इंटरेस्ट डेवलपमेंट करें, यानी इंटरेस्ट ये जरूरी है, आपकी हॉबी हो। अगर ऐसा नहीं है तो देखें कि आपकी किन बातों में रुचि है, या अपनी रुचि बढ़ाएं, क्योंकि अपने काम के अलावा हमारे पास कोई अलग चीज होनी चाहिए जिसके साथ हम समय बिताएं। इससे आपको खुद को जानने में मदद मिलती है, जिससे आपका विकास भी होता है। और आखिरी बात है, नकारात्मक सोच से आप बचें, क्योंकि किसी भी कार्य के पहले ही उसके नेगेटिव पॉइंट पर बात ना करें। कई बार यह हमारी आदत में आ जाता है और जिससे हमारी छवि बिगड़ती है और हम में भी कॉन्फिडेंस भी की कमी आ जाती है। अगर ऐसे ही भाव मन से आए तो उसको हटाने की कोशिश करें, नहीं तो यह आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी व्यक्तित्व विकास को लेकर जो हमें आपको बतानी थी। हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी बड़े अच्छी तरीके से इन बातों को ध्यान में रखेंगे, ताकि हम आगे चलकर ये अपना जो व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं उसमें हम बिल्कुल सही उतरे, सही मायने में कहें कि आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। तो इसके लिए ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल मनीष जी, और हमें अब लगता है कि हमारी क्लास यहीं पर खत्म होने वाली है, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें बता दी हैं कि व्यक्तित्व विकास के लिए किन किन बातों का ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है, जो आपके व्यक्तित्व को निखारती हैं और आपकी एक अलग छवि बनाकर रखती हैं। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, कार्यक्रम भी यहीं समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि हमारा समय भी हो रहा है भाई लोग इस कार्यक्रम से जाने का। तो अब आखिरी में एक बात जो रह गई है वो ये है कि यह कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा है, हमें जरूर फोन के माध्यम से बताएं, इसका सुझाव दें। जैसा कि हमने कार्यक्रम में बताया कि अपना व्यू जरूर दें, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आप अपनी बात को जरूर रखें। तो आप हमें भी इस कार्यक्रम का सुझाव दीजिए, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, और बताइए कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा है। जिस साथी में हमारा पता भी है, जिस पर आप पत्र के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है
0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम उड़सतगला के

0: खास ओरछा।
1: साथियों अब हमें दीजिए जाने की अनुमति, यानी आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
0: और मनीष को दीजिए जाने की अनुमति।
1: फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए
0: नमस्कार।

0: रूपी साजिश
1: या ससुजी का दुलार,
0: ननद जी से हो नोक झोक
1: या देवर का प्यार, इन सभी बातों को समेट कर लाया
0: आपका अपना कार्यक्रम बातें छोटे पर्दे की।
2: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा,
3: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष।
2: और श्रोताओं हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम बातें छोटे पर्दे की।
3: और साथियों बातें छोटे पर्दे की कार्यक्रम में हम महारानी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पढ़ रहे थे और सुन भी रहे थे, और सुनकर हमारे श्रोता साथी भी मैं सोचने लगे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास इतना बड़ा है। तो आपको बता देना चाहते हैं, आगे चलते हैं और इस कहानी में हम जानते हैं कि जब महारानी ने देखा कि सिंधिया सरकार की तोपों के मारे अकस्मात पेशवा के फौज हैरान है, तब उन्होंने बड़े आवेश के साथ अपने वहीं के 200 घुड़सवारों को लेकर क्रोध से तड़पती हुई नागिन की तरह सिंधिया के तोपखाने पर हमला किया। उधर तात्या टोपे ने भी अपनी सेना के भिन्न भिन्न भाग करके उन्हें तोपों की मार से बचाया। महारानी लक्ष्मीबाई अपने वीर और रणापटु सवारों के साथ ज्यों ही सिंधिया के तोपखाने पर टूट पड़ी, त्यों ही गोलंदाज लोग तोप छोड़कर भाग गए। सिंधिया की ओर की दूसरी सेनाएं भी तात्या टोपे और उनकी सेनाओं को देखकर भाग गई। केवल महाराज जयाजी राव सूरता के आवेश में आकर अपनी घाटी वाली पलटन को आगे लाकर विरोधियों से युद्ध करने लगे। एक ओर रणगंगा से अच्छी तरह जमा हुआ एक तरुणा राजकुमार और उसकी खासी 1200 सिलेदार पलटन, और दूसरी ओर दुर्बंध कमे से फंसी हुई एक अबला और घोड़े से उसके रणसूर सवारों का अपूर्व सामना हुआ। जयाजी महाराज के अंतःकरणा में अंग्रेजी सरकार के प्रति बड़ी आदर बुद्धि और प्रेम था, अतएव उनकी क्रोधान खूब प्रचलित हो उठी थी। इससे उनकी वीर श्री अति सुंदर रण खिल रहा था। और इधर महारानी लक्ष्मीबाई के मृदु हृदय से अंग्रेजी सरकार के जुल्मी बर्ताव के कारण भयंकर क्रोध अग्नि धधक उठी थी। इस कारण उनके आवेश का विलक्षणा प्रखर स्वरूप हो गया था। कुछ देर तक दोनों ओर से खूब तलवार पर तलवार भजी। सिंधिया सरकार के भड़कीली पोशाक वाले सिलेदार सिपाही क्षण भर में हैरान हो गए। महारानी के कस पर चढ़े हुए जवां मर्द सवार अपने शस्त्रों को स्वाहा करने लगे।
2: यह देखकर सिंधिया महाराज पीछे की ओर मुड़े और अपनी प्राण रक्षा के लिए दीवान दिनकर राव और दूसरे एक तो अपने विश्वासी सरदारों को साथ लेकर धौलपुर के मार्ग से आगरे के किले आकर उन्होंने अंग्रेजों की शरण ली। वास्तव में सिंधिया सरकार ने उस समय अपनी राजभक्ति का बहुत अच्छा परिचय दिया और अपनी मित्रता पालन करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों को भी कुछ परवाह ना करके प्राचीन संबंधियों से युद्ध किया। यह बात जिस प्रकार उनके लिए उस समय गौरव की हुई थी, उसी प्रकार झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने पराक्रम से स्वराज स्थापन करने की अभिलाषा से जो कीर्ति संपादन की, वह भी सदैव अटल रहेगी। यह कोई सामान्य बात नहीं है कि महाराज जयाजी राव सिंधिया को, जिनके शौर्य की बड़े बड़े यूरोपियन लोगों ने तारीफ की है, जिनकी लड़ाई की तैयारी की देखकर शत्रु की छाती दहल उठती और जिनके रथी महारथी सूर सरदारों को देखकर विजय श्री स्वयंवश हो जाती, महारानी के समान एक अबला ने किसी प्रकार की विशेष सहायता ना होने पर भी केवल अपनी तलवार से जोर पर संग्राम से भगा दिया। एक संस्कृत कवि के कथन अनुसार इस नियम की सत्यता अच्छी तरह सिद्ध होती है कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवन्ति महता नोपर के, अर्थात महापुरुषों की कार्य सिद्धि उनके सच्चे पराक्रम पर निर्भर है, ना कि केवल साधनों पर। महाराज जयाजी राव सिंधिया के महारानी लक्ष्मीबाई से पराजित होकर ग्वालियर से आगरा भाग आने पर महाराज महलों में बड़ा हाहाकार मचा हुआ था। सरकार की सवारी हाहाकार आगरे चले जाने की खबर सुनते ही सब राजा स्त्रियां आत्म संरक्षण के लिए नरबर गांव में चली गई। वहां सिंधिया सरकार के एक दो विश्वास पात्र सरदार और पुराने रिसाले के जो कुछ स्वामी भक्त थे उन्होंने उनकी बड़ी रक्षा की। इधर विद्रोही लोगों ने बड़े आनंद से शहर में प्रवेश किया। ग्वालियर दरबार के जो सरदार और राजनीतिक भीतरी तौर से राव साहब पेशवा और तात्या टोपे आदि का अभिष्ट चिंतन करते थे उनको इस विजय का हाल सुनाकर बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने इन लोगों का आगमन सुनकर अपनी आदर वृद्धि प्रकट करने में कोई आगा पीछा नहीं सोचा। ग्वालियर की फौज ने अब राव साहब को ही अपना मुख्य स्वामी समझकर उनके स्वागत के लिए तोपों की सलामी दी और किसी प्रकार का प्रबंध ना कर उन्हें लश्कर राजधानी में आने दिया। पेशवा बड़े ठाट से अपने लवाजमा के साथ सिंधिया के राजमहल में पधारे और वहीं उन्होंने अपना डेरा डाला। महारानी लक्ष्मीबाई लश्कर के पास नवलखा नामक बाग में उतरी। पेशवा के साथ के और दूसरे सरदार तथा मित्र शहर के भिन्न भिन्न महलों में उतरे। मतलब यह कि राव साहब पेशवा को बिना विशेष परिश्रम के थोड़े ही समय में सिंधिया सरकार की राजधानी मिल गई और वहां उनकी स्वतंत्रता दर्शक विजय पताका फहराने लगी। शहर पर अधिकार होते ही तात्या टोपे ने ग्वालियर के किले की तरफ कुछ सेना भेजी। किले के अधिकारी तात्या साहब से पहले ही से मिले हुए थे, इसलिए किले पर अधिकारी करने में उन्हें कुछ प्रयास नहीं पड़ा। तात्या टोपे की सेना पहुंचते ही किले वालों ने दरवाजे खोलकर सारा किला उनके स्वाधीन कर दिया। ग्वालियर के समान जंगी और पहाड़ी किला तथा आगणित युद्ध सामग्री पाकर तात्या को अत्यंत हर्ष हुआ। उनको इस बात का गर्व भी हुआ कि ऐसे अजय किले के अप्रतिम सभ्यार्थ के आगे अब हमारी बराबरी कौन कर सकता है। किला और शहर ले लेने पर विद्रोहियों ने ग्वालियर में बड़ा उपद्रव मचाया। पहले तो उन्होंने रेजिडेंसी पर धावा करके उसे जला दिया और वहां का सारा माल असवाब लूट लिया। इसके बाद सिंधिया सरकार के पुराने राजमहल और उनके अंग्रेज हितेशी सरदारों के महलों पर उन्होंने धावा किया और उन्हें नष्ट करना आरंभ किया। उन्होंने राजमहल का विध्वंस करके दीवान दिनकर राव, सरदार बलवंत राव और माहुरकर आदि प्रधान दरबारी लोगों की हवेलियां मिट्टी में मिला दी। इतना ही नहीं किंतु उन्होंने अपनी धन त्रष्टा त्रत करने के लिए शहर लूटना भी आरंभ कर दिया। परंतु सौभाग्य से जब राव साहब पेशवा ने इस बात का सख्त हुक्म दिया कि शहर वालों को कोई ना लूटे और ना कोई उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ दे, तब कहीं जाकर यह लूट मार बंद हुई। ग्वालियर विजय करके विद्रोहियों और खासकर राव साहब पेशवा ने सोचा कि अब सिंधिया शाही गई और पेशवाई आई। सब दरबारियों को अनुकूल देखकर राव साहब ने ग्वालियर के सब सरदारों और जागीदारों को इकट्ठा किया। फौज के अफसर भी जमा हुए। सिंधिया महाराज ने जिन चार सरदारों को बलवाई समझकर कैद कर रखा था उन्हें पेशवा ने छुड़ा दिया और वस्त्र वगैरह प्रदान किए। इन सब की सलाह से आसपास के अनुकूल राजाओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए। इस प्रकार सब तैयारी करके पेशवा ने खुद अपने को सिंहासन रूढ़ करने का शुभ मुहूर्त निश्चय किया। 3 तारीख को फूलबाग में बड़ा जंगी दरबार हुआ। पेशवा के अनुकूल सब सरदार, राजनीतिक सिलेदार आदि अपने अपने योग्य स्थान में सुशोभित हुए। तात्या टोपे और उनके नीचे के सब फौजी सरदार अपनी अपनी पोशाक पहनकर सभा में हाजिर हुए। खुद

0: राव साहब भी पेशवाई राजसी पोशाक पहनकर मस्तक में सिर पेच और कलगी लगाकर कानों में मोतियों के चौकड़े और गले में हार पहनकर पूर्ण वैभव के साथ चौबदार और बंदीगणों की मंगल ध्वनि सुनते हुए दरबार में पधारे। इसके बाद यथाविधि ताजीम और दरबारी लोगों के मुजरे होकर पेशवा सिंह सनारूढ़ हुए। उन्होंने इस खुशी में अपने सरदारों का अभिनंदन किया और बहुमूल्य वस्त्र अलंकार प्रदान किया। उनका उचित सम्मान किया गया। राम राव गोविंद नामक एक सज्जन को प्रधानमंत्री के वस्त्र दिए और तात्या टोपे को सेनापति नियत किया गया।
1: इसके बाद 8 प्रधान नियत करके उन्हें योग्यता अनुसार अधिकार दिए गए। फौजी लोगों को 20 लाख रुपया बांटा गया। चारों ओर आनंद ही आनंद देख पड़ने लगा। राव साहब ने सिंधिया सरकार के अचानक मिले हुए धन का खूब उपयोग किया। नित्य ब्राह्मण भोजन होने लगे। सैकड़ों भिक्षु को उत्तम उत्तम भोजन मिलने लगे। पाकशालाओं में बाजारों आदमी ब्राह्मण भोजन ही के लिए नौकर रखे गए। इस प्रकार राजमहल में नित्य नित्य नए नए उत्सव होने लगे। राव साहब पेशवा तात्या टोपे आदि सुख में निर्गम होकर अपने कर्तव्यों को बिल्कुल भूल गए। यह हाल देखकर महानाई लक्ष्मीबाई को बहुत खेद हुआ। उन्होंने राव साहब से बारंबार यही कहा कि आप इस समय ये सब सुख साज बंद कीजिए। यह समय उत्सव और आनंद करने का नहीं है, युद्ध के लिए तैयार होने का है। परंतु राव साहब पेशवा ने महारानी लक्ष्मीबाई की बातों पर कुछ ध्यान ना दिया। इस पर महारानी लक्ष्मीबाई ने जरा जोर देकर कहा, आप इस समय विजय के आनंद में मग्न हैं, पर यह बात अच्छी नहीं है। सिंधिया का सब खजाना और सेना आपके अधीन है। इसका यदि अच्छा उपयोग नहीं किया जाएगा तो आपकी सब आशाएं धूल में मिल जाएंगी। अंग्रेज लोग बड़े चालाक और उद्योगी हैं। इस बात का कुछ ठीक नहीं है कि वे कब हम लोगों पर चढ़ाई कर दें। यदि आप ऐसे ही अचेत पड़े रहें तो हमारा नाश होने में तनक भी देर नहीं लगी। अब यह ऐस आराम छोड़िए और सेना की तैयारी में लगिए। फौजी लोगों की तनख्वाह बढ़ाकर उन्हें उत्साहित करना चाहिए। यह समय व्यर्थ नष्ट करने का नहीं है। बड़ी कठिनाई से कार्य साधन के लिए अनुकूल समय मिला है। अतएव अब आपको सावधानी के साथ युद्ध की तैयारी में लग जाना चाहिए। परंतु बेसमझी के कारण पेशवा के मन पर महारानी के इस उपदेश का कुछ असर ना हुआ। वे बराबर उसी आनंद में मग्न रहे। ब्राह्मण भोजन भी वैसा ही चलता रहा। तात्या टोपे भी अपनी बलवान सेना के घमंड में मस्त रहे। उन्होंने तो यहाँ तक भी समझ लिया कि अब हमारी सेना का मुकाबला अंग्रेज लोग कर ही नहीं सकते।
0: इधर कालपी युद्ध के बाद सरहुजू रोज साहब विश्राम लेने के लिए बंबई जाने वाले थे। उन्होंने भिन्न भिन्न अंग्रेज वीरों के अधीन भिन्न भिन्न पलटने करके चारों ओर विद्रोहियों के नाश कर देने का प्रबंध कर दिया था। कर्नल रॉबर्टसन सेना सहित ग्वालियर की ओर भेजे गए थे। 1 जून को रॉबर्टसन साहब की ओर से विद्रोहियों के ग्वालियर पहुंचने की खबर सरहुजू रोज साहब को मिली। इस खबर से उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बहुत सी गोरी और काली फौज, घुड़सवार और तोपखाना आदि मेजर इष्टवर्ड के अधीन करके रॉबर्टसन साहब की मदद के लिए भेज दिया। यह फौज ग्वालियर पहुंचने भी ना पाई थी कि 4 जून को रोज साहब को यह दुखदायक समाचार मिला कि विद्रोही ने ग्वालियर जीत लिया और वहां के महाराज आगरे भाग गए। यह सुनते ही रोज साहब बहुत चिंतित हुए और घबराए कि उनकी सब आशाओं पर पानी फिर गया। झांसी और कालपी के जीतने से उन्हें जो आनंद हुआ था उसे वे क्षण भर के लिए भी भूल गए। कहा तो वे विश्राम लेने के लिए बंबई जा रहे थे और कहा उन्हें इस बड़ी भारी चिंता ने आ घेरा, पर वे बड़े दृढ़ और साहसी वीर थे। वे धैर्य के साथ फिर विद्रोहियों की पराजित करने के लिए तैयार हुए। इसमें संदेह नहीं कि इस समय यदि सरहुजू रोज के समान वीर पराक्रमी और चतुर योद्धा विरोधियों के सामना करने के लिए तैयार ना होता तो ग्वालियर में राव साहब पेशवा द्वारा पुनर्जीवित किया हुआ पेशवाई का वृक्ष जोरदार हो जाता। और उसकी जड़ें दक्षिण तक जम जाती। सरहुजो रोज ने बहुत जल्दी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैंगिंग को तार द्वारा इस बात की सूचना दी कि मैं स्वयं ग्वालियर पर धावा करके वहां का किला और शहर अपने अधिकार में कर लेने के लिए तैयार हूं। लॉर्ड कैनिंग ने रोज साहब का उत्साह देखकर ग्वालियर पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और उन्हीं को इस युद्ध का सेनापति नियुक्त किया गया। सरहुजी रोज ने ज्यों ही फिर अपना कर्तव्य पालन स्वीकार किया, त्यों ही जनरल नेपियर जो उनकी जगह पर आए थे द्वितीय सेनापति बन गए और बड़े उत्साह के साथ उन्हें मदद देने की प्रतिज्ञा की। इससे मालूम होता है कि अंग्रेज लोग राष्ट्र कार्य के लिए आपस में कितने प्रेम से बर्ताव करते हैं। 5 तारीख को सरहुजू रोज और ब्रिगेडियर जनरल नेपियर ने अपनी अपनी सेना के कई भाग करके उसे भिन्न भिन्न अफसरों के सुपुर्द किया और ग्वालियर पर चढ़ाई करने के लिए उपयुक्त मार्ग निश्चय किया। मेजर आर को उन्होंने हैदराबाद कंटिजेंट फौज देकर दक्षिण की ओर के बलवाइयों को दबाने के लिए ग्वालियर और सीपरी के बीच पनिहार के पास भेजा। ब्रिगेडियर इस्मत को राजपूताना फील्ड फोर्स की नवीन सेना का अफसर नियुक्त करके ग्वालियर के पूर्व 5 मील पर कोटे की सराय की और भेजा। कर्नल रिडेल के साथ में बहुत सा तोपखाना देकर उन्हें आगरा और ग्वालियर के रास्ते पर भेजा। स्वयं रोज साहब और जनरल नेपियर ने बहुत सी सेना लेकर कई ओर से मुरार की छावनी पर धावा करने का विचार किया। 6 जून को सरहुजू रोज साहब ने कालपी से ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया। इस समय इनके साथ मध्य भारत के पॉलिटिकल एजेंट सर रॉबर्ट हैमिल्टन और ग्वालियर के रेजिडेंट मैकफर्नर्स भी थे। इन दोनों से रोज साहब को ग्वालियर का भीतरी हाल और मार्के की जगहों की जानकारी अच्छी तरह से हो गई थी और समय समय पर सलाह लेने का भी अच्छा मौका मिल गया था। अंग्रेजी सेना बड़े वेग से जा रही थी। 11 जून को इंदूर की गांव में स्टुअर्ट साहब की पहली बी ग्रेड से उनकी भेंट हुई। दोनों सेनाएं पहुज नदी पार करके उस पहाड़ी प्रदेश में खूब तेजी और परिश्रम के साथ जा रही थी। रास्ता बहुत बिकट होने के कारण यदि सेना के लोगों को दुर्दशा हो गई थी तो उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा और सेनापति की आज्ञा अनुसार वे बराबर मार्ग तय करते गए। अंग्रेजी सेना का यह उत्साह और साहस देखकर रोज साहब का मन और भी बढ़ गया।
1: 16 जून को प्रातः काल सरकारी सेना बहादुरपुर नामक गांव में, जहां सिंधिया महाराज की हार हुई थी, जा पहुंची। वहां से उन्हें ग्वालियर के प्राचीन प्रचंड और पहाड़ी किले का भीम रूप देख पड़ने लगा। रोज साहब ने सूक्ष्म रीति से विद्रोहियों के बलवाइयों का निरीक्षण किया। वहां से उन्होंने विभिन्न वृक्षों से घिरे हुए मुरार की छावनी के उच्च प्रदेश को जब देखा, तब उन्हें मालूम हुआ कि वह सारा प्रदेश विद्रोहियों के लिए लिया है और छावनी के अग्रभाग में घुड़सवार सेना का रिसाला, दाहिनी ओर तोपखाना और बाईं ओर पैदल फौज आदि रखकर खूब धमासान तैयार कर रखी है। यह हाल देखकर अंग्रेज वीरों ने भी अपनी सेना के कई भाग करके तोपों के हथियारबंद दृढ़ मोर्चे तैयार किए। अंग्रेज फौज के ठहरने के लिए अभी कोई अच्छा मुकाम ना मिला था, इसलिए सरहुज साहब ने सोचा कि सबसे पहले अपनी रणसूर 96वीं पलटन को आगे करके मुरार की छावनी पर हमला करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और मनीष भैया, हमें लगता है कि अब यहाँ पर हमने काफी सारी बातें कर ली हैं अपने 7वें अध्याय में, और हम 7वें अध्याय में चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ज्यादा हम बोलते रहेंगे तो हमारे श्रोताओं को जो है बोरिंग सा लगने लगेगा। तो हम यहाँ पर एक बढ़िया सा लोकगीत सुनते हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय भी उतना ही निर्धारित भी होता है। तो आइए श्रोताओं, हम यहाँ पर एक पहले गीत सुन लेते हैं।

0: गीत के बाद श्रोताओं आप सभी को बता दें कि अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। सातवें अध्याय में हम चल रहे हैं, आगे इसमें क्या होता है वो हम आपको अगले कार्यक्रम में जरूर बताएंगे।
1: तो साथियों, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
2: सास बहू की साजिश
3: या ससुर जी का दुलार,
2: ननद जी से हो नोकझोंक
3: या देवर का प्यार, इन सभी बातों को समेट कर लाया
2: आपका अपना कार्यक्रम बातें छोटे पर्दे।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। जैसा कि मित्रों, हमारे किसान साथियों, आपको पता है कि खेत खलियान कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। साथ साथ में अभी आपको पता होगा कि मौसम में परिवर्तन हुआ है। कुछ दिन पहले बरसात भी हुई थी, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे काफी हमारे किसान साथियों को नुकसान हुआ था। और समय समय पर हम विषय विशेषक के माध्यम से आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अभी हाल में आपको पता होगा कि सब्जियों की फसल में जो कीट व्याधियां का प्रकोप देखने को और सुनने को जो मिल रहा है, उससे बचाव किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये एक सवाल आया हुआ था हमारे किसान साथी का, जो कि उज्जैन पठा के हमारे विजय जी ने पूछा हुआ था। और विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सैंसी हाशमी जी हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी नमस्ते किसान भाइयों, आज हम जो है तटवर्गीय फसलों में लगने वाले जो प्रमुख कवकजनित रोग है उन पर चर्चा करेंगे, तो उनके बारे में, उनकी पहचान और निवारण के बारे में किसानों को बताएंगे कि वो रोग हम कैसे पहचान सकते हैं और उनसे अपने फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कद्दू वर्गीय फसलों में जो प्रमुख रोग लगते हैं उनमें मृदु रोमिलासिता, शूंडिलासिता तथा उक्ता, यह जिसे मिलानी रोग कहते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो पहले हम एक एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे और उस रोग के लक्षण, यानी कि उस रोग को कैसे पहचाना जा सकता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले रोग मृदु रोमिलासिता की। तो यह रोग जो है भारत के उत्तरी भागों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है, और जैसा कि अभी हमने मौसम को देखा ही है कि वर्षा ऋतु हो रही है और फिर धूप निकल रही है, तो इस तरह का जो मौसम होता है, इस तरह के मौसम में ही ये रोग जो है वो अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद ही इस रोग के द्वारा नुकसान ज्यादा पहुंचता है। और रोग का संक्रमण जो होता है वो इसमें बुआई के एक माह बाद ही हो जाता है, और इसके द्वारा जो नुकसान होता है उपज में, उपज जो होती है वो नगण्य हो जाती है और 30-70% तक इसमें नुकसान देखने को मिलता है। और मृदु रोमिलासिता का विशेष का प्रभाव वैसे तो कद्दू वर्गीय फसलों में सभी फसलों पर देखने को मिलता है, लेकिन विशेष प्रभाव जो होता है वो खरबूजा और खीरे पर देखने को मिलता है। तो इस रोग के कारण खरबूजे में जो होती है वो मिठास नहीं रह जाती है।
0: मैं एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में खास तौर पर सब्जियों की अगर बात करें तो बहुत महंगाई पकड़ी हुई है सब्जियां, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों की इस मौसम में बहुत नुकसान हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी फसलों की तैयारी करें, कौन कौन सी फसलें, मतलब सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं और उनकी निगरानी किस तरीके से की जा सके?
1: तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब फसल लगाए किसान, तो फसल लगाने के पहले अपनी भूमि को तैयार कर ले। भूमि को तैयार करने का मतलब ये है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके रोग जनक जो होते हैं वो मृदा में ही पाए जाते हैं, या फिर उन फसलों के बीजों में, जिन बीजों की बुआई की जाती है तो उन बीजों में पाए जाते हैं। तो यदि हम पहले से मृदा का ट्रीटमेंट कर लें और जो हमारे बीज हैं उनको उपचारित कर लें तो इन रोगों से बचा जा सकता है। जैसे गर्मियों में हम लोग गहरी जुताई करके खेतों को छोड़ दें तो उसमें मिट्टी में उपस्थित जितने भी रोगाणु होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, और जितने भी खरपतवार हैं या अवांछनीय पेड़ पौधे हैं उनको हटा दें, क्योंकि उन पर ही जो है रोगजनक, यानी कि उन पर रहते हैं, तो अगर उनको हटा दिया जाए तो उनका जो है वो सोर्स खत्म हो जाएगा, सोर्स यानी स्रोत खत्म हो जाएगा रोग फैलने का। तो इस तरह से किसान भाई बिना लागत के ये छोटी छोटी क्रियाएं करके रोगों से जो है वो अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया आपने बताई है। एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि जिन किसान साथियों ने अपनी फसल, जो अगर कद्दू वर्गीय की बात करें तो कद्दू

0: वर्गीय की फसल उन्होंने अपने खेतों में लगा दी है, तो कौन
1: जी
0: कौन से ऐसे मतलब रोग इस मौसम में देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, और रोकथाम के लिए अगर बात करें तो क्या
1: जी
0: उनको उपाय करना चाहिए मैम?
1: जी वो मैं वही इसी शीर्षक पर आ रही हूँ। तो इसमें जो प्रमुख रोग हैं ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें प्रमुख रोग मैंने आपको तीन बताए हैं, मृदुरोमिलासिता, चूर्णिलासिता और उकता या ग्लानि रोग। तो ये आपको एक एक करके मैं इसके लक्षण, इनसे होने वाले नुकसान और साथ ही साथ इनके जो निवारण है वो बताती चलती हूँ। तो सबसे पहला जो रोग है मृदुरोमिलासिता, जो कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिलता है, तो इसके अगर लक्षणों की बात करें हम, तो इसकी पत्तियों की ऊपरी सतह जो होती है उस पर छोटे छोटे हल्के हरे और पीले धब्बे बनते हैं, जो कि जल्दी ही भूरे रंग के हो जाते हैं और इनकी शिराओं तक ही सीमित रहते हैं। जो शिराएं होती हैं वहां शिराओं पर ये धब्बे नहीं पड़ते हैं, तो वहां से ये थोड़े से मुड़ जाते हैं, तो ये धब्बे जो है वहां जिस जगह शिरा पाई जाती है वहां पे कोणीय हो जाते हैं थोड़े से। और इन धब्बों के ठीक नीचे यदि हम देखते हैं तो कवक का जो है वो जाली नुमा बैगनी या नीले रंग का जो होती है वो वृद्धि दिखाई देती है, और संक्रमित पत्तियां जो होती हैं फिर जल्दी भूरी होकर सिकुड़ जाती हैं और उनका जो संरचना होती है वो विकृत हो जाती है, और विकृत होकर ये पत्तियां जो होती है पौधे से गिर जाती हैं। अगर संक्रमण उग रूप में होता है तो फल छोटे होते हैं, संख्या में कम बनते हैं तथा विरूपित हो जाते हैं, यानी कि उनकी संरचना जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सर्वप्रथम तो खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए
0: जी मैम,
1: और आगे की बुआई करना चाहिए। खेत की बुआई करने से पहले खेत की अच्छी तरह से सफाई कर देना चाहिए, यानी कि कोई भी खरपतवार या वांछनीय पौधे उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर ये समस्या बार बार आ रही है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है तो हमें कम से कम 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कि कद्दू वर्गीय फसलों को 3 वर्ष तक नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारे जितने भी निवारण हो गए ये बिना किसी खर्च के हो गए, और अगर हम बात करें रसायनों के द्वारा, अब भाई रोग आ ही गया है और फसल खड़ी है तो फिर उसको जो है नियंत्रित करना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैनकोजेब 0.25% और इसे क्या करते हैं 2.25 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करते हैं। तो अगर रोग गंभीर अवस्था में, बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में हो, तो मेटालैक्सिल और मैनकोजेब इसका जो है इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, और इसकी मात्रा जो होते हैं 2.5 ग्राम मेटालैक्सिल और मैनकोजेब को 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर और इसका छिड़काव करने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
0: ये मैम, अगर शुरुआत की अगर बात करें मैम, तो
1: जी
0: शुरुआत में हम जब अपने पौधे की रोपण करते हैं या अपने सब्जियों को लगाते हैं, उस समय जब हम बीज उपचार की बात करते हैं, तो किस तरीके से हमारे किसान साथियों को, और खास तौर पर अगर महिलाओं की मैम बात करें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि खेतों में कंधे से कंधे मिलाकर महिलाएं खेतों में काम करती हैं, तो उनको सबसे ज्यादा ये सलाह बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वो अपने खेतों में जब सब्जियां लगाए तो बीज उपचार किस तरीके से करना चाहिए।
1: बीज उपचार देखिए आजकल सब मतलब हर जगह यही बात बार बार बोली जा रही है कि हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें। तो उसके लिए सबसे अच्छा हमारे लिए एक विकल्प ये है कि हम ट्राइकोडर्मा जो है और जो आपके मेडिसिनल प्लांट हैं इनसे बनने वाले जो इनके जूस हैं, इनको जूस को निकाल के और उससे बीज उपचारित करें तो वो इफेक्टिव भी होते हैं, कम उनकी लागत भी कम होती है और इसको इससे किसी भी रोग को रोका भी जा सकता है।
0: शुरुआत से ही हमें मतलब इसका ध्यान
1: जी
0: रखना
1: जी जी
0: चाहिए।
1: जी जी
0: और
1: जी
0: अगर मैम पानी की बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां रहती हैं जिनको अधिकतर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी की अगर
1: जी
0: बात करें तो पानी की किल्लत अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बनी ही रहती है, तो ऐसे में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सी सब्जियां इसमें लगाया जाए जिसमें कम पानी से उत्पादन उनका अच्छा हो। साथियों, इस सवाल का जवाब सुनने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं और मनोरंजन करते हैं एक अच्छे से गीत के साथ। इसके बाद इस सवाल का हम जवाब हमारी जो विषय विशेषज्ञ है मैडम, उनसे हम लेंगे। तो आइए।

0: जहां तक पानी की बात है तो देखिए, इसमें जो ये वाली सब्जियां हैं कद्दू वर्गीय फसलों में, आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो
1: जी मैडम,
0: इनकी जगह हम अप्रिशिएट करें कि हम जो है वो लौकी, कद्दू, तुरई इस तरह की और करेला इस तरह की सब्जियों को लगाएं
1: बिल्कुल
0: इस
1: मैडम,
0: क्षेत्र में।
1: जी मैम। और दूसरी अगर बात करें मैम टमाटर, अगर देखा जाए तो यहाँ पर टमाटर का उत्पादन ठीक ठाक होता था, लेकिन कुछ
0: जी
1: दिनों से हम ये देख रहे हैं कि टमाटर का उत्पादन अपने क्षेत्र में कम पैदावार होता है। तो क्या कारण हो रहा है कि ये सब्जियों में गिरावट देखने को मिल रही है?
0: जैसा कि हम लोगों ने, हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी का एक फार्म है तो
1: जी
0: वहां पे बच्चे टमाटर लगाते हैं, तो मैंने ये प्रायोगिक रूप से देखा है कि वहाँ शुरुआती, जब टमाटर शुरुआत में आता है, मतलब आरंभिक अवस्था होती है, तो उसमें एक रोग लगता है, वो है अगेती झुलसा रोग। और उसके बाद जब टमाटर जो है वो तैयार हो जाता है तो उसमें पछेती झुलसा रोग आ जाता है। तो ये दोनों रोग जो होते हैं वो टमाटर की क्वालिटी को तो खराब करते हैं, साथ ही साथ उनकी जो उपज है उसको भी कम कर देते हैं। तो इन दोनों रोगों पर अगर नियंत्रण करने की किसान कोशिश करे तो हमारे ख्याल से उपज को बढ़ाया जा सकता है।
1: तो मतलब शुरुआत से ही हमें ध्यान में रखना
0: जी
1: चाहिए इन
0: जी
1: बातों
0: शुरुआत
1: को।
0: से, किसान को शुरुआत से अगर ध्यान देगा तो
1: जी
0: उसकी रोग को नियंत्रित करने में लागत भी कम लगेगी, और साथ ही साथ जब वो हर बार ये क्रियाएं करेगा तो उस रोग की तीव्रता को भी कम किया जा सकता है। और इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेट ये है, मतलब विकल्प ये है कि किसान जो है रेजिस्टेंस वैरायटी लगाए, और रेजिस्टेंस वैरायटी लगाने के साथ साथ हमेशा हर सीजन में ना एक ही रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं लगाए, वैरायटी को बदल बदल के लगाए। क्योंकि क्या होता है, जो रोगजनक होता है, जैसे आपने देखा होगा मनुष्यों में जो रोग होते हैं, तो जब वो रोग जो है लगातार आते रहते हैं तो वो प्रबल हो जाते हैं, तो डॉक्टर भी जो होता है वो दवा को जो है वो परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है। तो इसी तरह से अगर हम रेजिस्टेंस वैरायटी को बदल बदल के लगाएंगे तो जो रोगजनक है, जो उसकी रेजिस्टेंस को जो होता है वो तोड़ देता है, वो तोड़ नहीं पाता है, वो अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है ना। जब लगातार एक ही रोगजनक जो होता है उस भूमि में पाया जाता है, वही रोगजनक और वही रोग आ रहा है, तो और आप वही जो है वो रेजिस्टेंस वैरायटी लगा रहे हो, तो उसकी जो होती है रेजिस्टेंस को वो तोड़ देता है। तो इसलिए अगर आप उसको बदल बदल के लगाएंगे ना तो रोगजनक जो है वो प्रभावी नहीं रहेगा
1: मैम,
0: उतना।
1: इसका ये कारण मतलब हम तो उस चीज में मतलब जानते नहीं हैं, आप एक्सपर्ट
0: जी
1: हैं। जैसे कि हम लोग मिट्टी की अगर चर्चा करें कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है, तो इसका प्रभाव क्या सब्जियों पर पड़ रहा है मैम?
0: जी बिल्कुल पड़ रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि किसान जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो रसायनों का प्रयोग कर रहा है। ये
1: जी
0: रसायन अगर किसी एक खेत में लगातार रसायन का उपयोग किया जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो छोड़ दीजिए, वो मिट्टी ही बंजर हो जाएगी। तो
1: बिल्कुल
0: इसलिए हम लोग बार बार अप्रिशिएट करते हैं किसानों को कि आप जो है वो रसायन का उपयोग ना करें, इसकी जगह इसके जो विकल्प हैं उनकी तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
1: जी जी
0: जिससे
1: जी
0: मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी रहेगी। और जब

0: बैरन पड़े रहते हैं ना, यानी कि खाली पड़े रहते हैं, तो उस समय जो है अगर ढेंचा लगवा दिया जाए खेत
1: जी
0: में,
1: जी
0: तो उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो उसको रिकवर करेगी मिट्टी।
1: मैम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में बरुआ सागर की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पर खरबूज और तरबूज की पैदावार बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज देखा जाए तो ये 100 में से 10% ही बचा है कि खरबूज और तरबूज लोग उगाते हैं। तो क्या कारण हुआ कि विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है ये सब्जियां, मतलब ये?
0: अब ये बरुआ सागर का जो टेक्सचर है, मिट्टी का नमूना है, एक तो इसकी जांच करवानी पड़ेगी कि
1: जी
0: भाई मिट्टी में क्या उत्पादकता में फर्टिलिटी में कमी आई है। दूसरी
1: जी
0: चीज ये है, वहां रोग कुछ ऐसे रोग होंगे जो हर साल कोई रोग अगर कम मात्रा में आता है और किसान ध्यान नहीं देता है, तो अगले साल उससे दुगनी मात्रा में आता है, फिर उसके अगले साल उससे ज्यादा मात्रा में आता है। तो हो सकता है वहां जो रोग आ रहा हो वो प्रबल हो गया हो, जो उसकी पैदावार को कम कर रहा है।
1: जी
0: और एक नो डाउट, अब हमारे यहाँ पानी की कमी तो है ही, क्योंकि
1: जी मैम
0: खरबूज तरबूज ये वाली फसलों को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, और अगर पानी की कमी है तो फिर किसान उन फसलों को लगाना भी छोड़ देता है, कम कर देता है, लगाना छोड़ देता है। तो
1: जी मैम
0: ये सारे कारण हो सकते हैं
1: जी मैम
0: सबके। उन्होंने
1: जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मुझे सुना और उम्मीद है कि वो मेरी बातों को जो है वो अपनाएंगे भी, जिससे वो फायदा उठा सके अपना कर। जी धन्यवाद।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथियों, अभी आपने विषय विशेषज्ञ से बहुत महत्वपूर्ण चर्चा को सुना, खासतौर पर गर्मी चूंकि बहुत ज़्यादा पड़ने लगी, कुछ दिनों पहले की बात हम कर रहे थे जहाँ पर ओलावृष्टि हुई थी और ओलावृष्टि से काफ़ी कुछ नुकसान हुआ था, लेकिन अब चूंकि गर्मी अब चरम सीमा पर है और इस गर्मी के खासतौर पर मौसम में किस तरीके से हमें सब्जियाँ अपनी लगानी चाहिए और उन सब्जियों से कैसे अपनी आजीविका को बढ़ाना चाहिए, इस विषय को बखूबी हमारे विषय विशेषज्ञ ने बहुत बढ़िया जानकारी दी। अब आगे चलते हुए अब हम मौसम आधारित जानकारी को सुन लेते हैं और क्या कुछ मौसम कह रहा है उसको भी हम जानते हैं हमारे आरजे वर्षा के साथ।
2: किसान भैया हरो नमस्कार। आप सबके बीच में हम एक बार फिर से यानी आपकी रेडियो दोस्त वर्षा लेके हाजिर हेंगे मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं, जहाँ जानकारी हम आप तक पहुंचा पा रहे हेंगे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से। सो साथियों, अब अपन जानत है मौसम की जानकारी। बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र टीकमगढ़ छतरपुर दतिया तथा निवाड़ी जिला के लाने आगामी 5 दिनों को मौसम को पूर्व अनुमान जो हम बता रहे हैं वो है 18 से 22 अप्रैल तक के लाने। मौसम विभाग के भोपाल केंद्र से प्राप्त मध्यमवधि मौसम पूर्व अनुमान के अनुसार बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र टीकमगढ़ छतरपुर दतिया तथा निवाड़ी जिले में आवे बारे 5 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहे तथा गर्म हवाएं चलने की संभावना हैगी। अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहे की और रात में न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहे की संभावना हैगी। हवा की औसत गति 3 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा रहे की संभावना है। अभी बारे 5 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहे तथा गर्म हवाएं चलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई सब्जियों मूंग आदि फसलन को तथा फल के बगीचन में हल्की सिंचाई नियमित अंतराल पर करत रहे। मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि परामर्श है 18 से 22 अप्रैल 2026 तक के लाने। मूंग में रस चूसक कीट को प्रकोप भी देखो जा रहा है गो, अतः किसान भाई फसल को निरीक्षण कर लेवे। संगई में पाए जावे पे बचाव हेतु इमीडा क्लोप्रिट दवा की 0.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर लेवे। जिन किसान भैयन ने खाली खेतन की जुताई नहीं करी हैगी वे विगत सप्ताह में भई बारिश को लाभ लेत भय रोटावेटर या मिट्टी पलटवे बारे हल से जुताई कर लेवे। संगई में अवशेष यानी नरवई को बिल्कुल ना जलावे। अब बात आउत हैगी साथियों फल फूल और सब्जियन की। नवीन उद्यानिकी में लगाए गए पौधा जैसे गर्म हवाओं से बचावे के लाने मंचलिंग करवे और पौधा के चारों ओर घास से कवर करवे एवं सिंचाई को कार्य भी करत रहें। वर्तमान मौसम में टमाटर तथा बैगन में फल तथा तना छेदक कीट को

0: को भी देखो जा रहा है को इसमें बचाव हेतु क्वानाल्फास दवा 25 ईसी की 2.0 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर लेवे। टमाटर, मिर्च, बैगन और पपीता की फसलन में पत्ती करल रोग होवे की संभावना हैगी। यदि जो रोग पाओ जा रहा है वो तो इके नियंत्रण के लाने डाइमेथोएट 30 ईसी को 2.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर लेवे। छिड़काव के 1 सप्ताह के भीतर पपीतन को सूखे पत्तन को ना तोड़वें। कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे कि कद्दू, लौकी, टिंडा, करेला, तरबूज एवं खरबूज इत्यादि में लाल कीड़ा एवं फल मक्खी को प्रकोप तापमान बढ़वे से दिखाई दे रहा है वो। अतः इसे बचाव हेतु किसान भाई डाइजोफास 40 ईसी दवा की 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के आसमान साफ होवे पे छिड़काव कर लेवे। गर्मी के मौसम को दिखत भाई किसान भाई नींबू वर्गीय पुराने पौधन के तनन में चूना में ब्लाइट टॉक्स मिला के लेप कर लेवे ताकि धूप से तने को कोनो क्षति ना पहुंचे तथा सिंचाई को काम भी कर लेवे। किसान साथियों अब बात करत हेंगे पशु बकरियां और मुर्गियन के बारे में। सो आवे बारे 5 दिनन के दौरान अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना को ध्यान में रखत भय किसान भाई पशुओं को खुले में बिल्कुल ना छोड़ भय तथा गर्मी से बचाव हेतु उचित व्यवस्था उनके लाने कर लेवे। दुधारू पशुओं को छायादार स्थान पर रखवे और दिन में 2 से 3 बार ताजा पानी जरूर पिलावे। संगई में इनको संतुलित आहार संगई संगे 50 ग्राम खनिज लवण और 20 ग्राम नमक जरूर खुआवे। दिन को अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना को ध्यान में रखत भय मुर्गी घरन को खिड़की दरवाजे पे दोपहर के समय 11 बजे से लेकर 5 बजे तक के लाने गीलो यानी बोरा जो रहेंगे उनको भिगो के 4 बजे के बाद इखो हटा देवे और 11 से 5 बजे तक इखो खिड़कियन पे लगा देवे। तो जो जानकारी हम आप तक श्रोताओं पहुंचा रहे थे कृषि परामर्श से जो जानकारी आप तक जा रही थी बा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से रेडियो बुंदेलखंड पे प्रसारित करी जा रही थी। नमस्कार,
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और अभी आपने मौसम आधारित जानकारी को सुना, ये जानकारी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ से दी जा रही थी। और अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत खलियान से जाने का। कैसा लगा कार्यक्रम हमें जरूर बताइएगा हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 9219207049। और आप अगर चिट्ठी के माध्यम से अपना पत्र भेजना चाहते हैं, पत्र व्यवहार का पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा दगेला के पास ओरछा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप ही ईवीरा अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज अपन मिले भैया ज्ञान सिंह यादव जी से और उनसे जाने विधा फाक के बारे में। तो ज्ञान सिंह भैया आज के कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अच्छा ज्ञान सिंह भैया जी, आपसे हम जो जान पूछा है कि आपको संगीत में लगन कब से लगी?
1: संगीत में लगन तो बहुत समय से लगी।
0: अच्छा, आप क्या साल कहते जब आपको याद हो?
1: समय का तो ये स्थिति है कि हमारी अधिकांश ये स्थिति बनी कि हमारी बुजुर्गन के बीच में बैठक रही है।
0: अच्छा,
1: तो उसी में जैसे कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भय, कहीं फाग सम्मेलन, कहीं भजन सम्मेलन, कहीं गोट

0: मिलन कवि गोष्ठी हुई, तो
1: बिल्कुल
0: उसमें सुनत सुनत हमें भी ऐसी लगी कि इस कार्यक्रम से थोड़ा जुड़ा रहे,
1: हाँ बिल्कुल
0: इसलिए फिर जो है थोड़ा बहुत मतलब उसमें
1: हाँ
0: रुचि
1: रुचि
0: रखी।
1: रखी आपने। अच्छा आपने रुचि रखी तो आपको जो पता है कि आप जब के साल के हते जब आप
0: वैसे तो हमारी सबसे ज्यादा पिताजी मतलब जी मुखिया रहे, जमींदार रहे,
1: अच्छा
0: तो सबसे पहले बात हमेशा होती पिताजी से, बाद में होती कभी
1: अच्छा
0: खेत और खलिहान पे चले गए
1: हाँ
0: और जो भी आओ उनने पूछी क्यों भैया पिताजी हैं,
1: हाँ
0: कहाँ गए पिताजी, कहाँ गए मुखिया जी, तो सबसे पहले हमारी बात होती, तो हर आदमी से हमारी मतलब एक
1: बात
0: जुड़ाव
1: हो
0: सा लग
1: जुड़ाव
0: गया,
1: सुराव
0: जुड़ाव
1: आपको
0: सुराव।
1: सो आपको लगन लगी। अच्छा
0: फिर
1: आपने सबसे पहला कौन सी चीज गाई आपको जो है ध्यान।
0: और ऐसी में तो ये स्थिति है कि जैसे मतलब हमारे पिताजी पहले रामायण पढ़ते, तो
1: अच्छा
0: पूरे गांव के लोग, गांव में मतलब ये स्थिति, मुखिया भी रहते
1: हाँ
0: और रामायण रखे थे, तो
1: अच्छा
0: सबसे पहले पिताजी जो है रामायण में रुचि रखते थे, तो हमें सुनने में आई, फिर
1: हाँ
0: धीरे धीरे पढ़ाई चालू हुई, तो हम फिर रामायण से शुरू हो गए थे।
1: अच्छा रामायण से आपने शुरू करी तो आपको कोनो चौपाई ऐसी याद है। आज के साल हो गई आपको कितनी उम्र है आपकी।
0: आप तो 62 साल की उम्र
1: बासठ
0: हो
1: साल
0: गई।
1: की उम्र हो गई तो अबे जब आपने रामायण पढ़ी हो गए तो अबे आज अपन कोनो चौपाई बता पाए हुए से
0: बिल्कुल
1: आपको
0: बता दें,
1: कौन सी चौपाई आपको अभी तक याद रही।
0: आज जैसे भगवान बल्लभ जी रहे
1: जी
0: और भगवान राम और कृष्ण रहे,
1: हाँ
0: लेकिन उन्हें कुछ ऐसी चीजें लिख दी कि जिसके कारण मतलब बोलने से भी मतलब कुछ काम हो जाते हैं।
1: हाँ।
0: तो जैसे विश्व भरण पोषण कर जोई, ताका नाम भरत अस होई, इस चौपाई से बोलने से आदमी
1: हाँ।
0: भूखा नहीं सोएगा।
1: अच्छा
0: हाँ

0: चाचा भाई आपको अभी तक याद है?
1: बिल्कुल
0: याद। अच्छा जा तो भाई आपके घर की बात करें, आपके पिताजी रामायण पढ़ते सो आपको ऐसे लगन लगी सो आपने रामायण में चौपाई अभी तक याद रखी।
1: चौपाई तो और भी
0: रखे। और भी रहे आपनों, लेकिन आप इसके अलावा रामायण के अलावा आपने कोनो जैसे के कीर्तन हो, कोनो भजन हो, कोनो भाग हो, तो आपको और का याद है?
1: तो जैसे एक पुरानी भाग है,
0: अच्छा
1: राजा मनु रानी शत्रु पहादी,
0: अच्छा
1: तो उनके नाम से किसी कवि ने एक भाग तैयार कर दी।
0: अच्छा
1: वो भाग जब हमने सुनी तो हमें भी लगी कि बहुत पुरानी भाग है जाए,
0: हाँ।
1: तो एक भाग भी हमने मतलब
0: अच्छा सुनी
1: सुनी
0: तो कौन प्रकार से अच्छा गा के सुनाओ।
1: राजा मन शत्रु पाकी कथा सुनो चितलाय,

जब पत भय मन में तपके कारण तजार बस गई है भीत हजार सुरपति आए बारम्बार काबे बार मांगो किधर गए केवल तन में हार हर ने दर सिंहासन छाड़ नफ्स मतलब तू की बाहर जीने तन त्यागी कृपा सिद्ध श्री के अमृत रूपी बानी दर्शन देवे भक्त कहाँ सुपिकते।

0: भगवान विष्णु कई बार आए तपस्या में, जब जो है राजा मनु और रानी शत्रुपा बैठ गए, अपने पुत्र का राजपाट सौंप गए और वन में तपस्या की लाइन से ले गए। पहले ऐसी परंपरा आती कि कुछ दिन बालापन में, कुछ दिन जवानीपन में, कुछ राजभोग के, इसके बाद वन में तपस्या खा लोग भाग निकल जाती। तो इन्हने अपने राजा मतलब ने अपनी पद की उपाधि सौंप के अपने चले गए जी। तो राजा और रानी ने ये सलाह नहीं कर पाई कि अगर भगवान विष्णु हमें मिल गए तो कौन सा वरदान मांगे, जाता दी हूँ भाई।
1: अच्छा,
0: और इस बार में जब तपस्या में लौलीन हो गए तो भगवान विष्णु की सिंहासन देखने लगी कई बार क्षीर सागर में। तो नारद जी कहा भगवान विष्णु ने पहुंचाओ के देखो कौन सो तपसी तपस्या पे बैठो, हमारी सिंहासन बार बार दिखती है। तो नारद जी ने चल के देखा तो राजा और रानी तपस्या में लौलीन है, थोड़े गैप बना के एक दूसरे की चर्चा न सुन सके और अपने तपस्या में लौलीन रहती। इस बीच में जब नारद जी आए तो राजा मनु और रानी शत्रुपा ने सोची जी विष्णु भगवान है, क्यों देखा नहीं था। उन्हें पूछी आप कौन है, बोले हम तो नारद हैं। बोले हम तो समझा के विष्णु हैं, तुम कहां से यहां टपकी। तो इस बीच में बोले आप कौन है, कैसे किसने बतू बैठे, बोले हम भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा में बैठे हैं और हम विष्णु से। बोले क्या मांगना है, बोले नहीं हमको दर्शन पर्याप्त है, दर्शन मिल जाए। तो उन्हें की भाई विष्णु भगवान आएंगे, दर्शन मिलेंगे आपको, और ये अपने तपस्या में लौलीन हो गए। तो नारद जी ने विष्णु भगवान का बताई कि दो भक्त बैठे राजा मनु रानी शत्रुपा, वो भी आपके दर्शन चाहते। बोले दर्शन देने में क्या तकलीफ है। तो कई बार विष्णु भगवान उन्होंने सोची नारद जी जैसे और कोई आ गए, तो विष्णु भगवान कई बार आए कि राजन नेत्र खोलो वरदान मांग लो, क्या मांगने हम विष्णु हैं। लेकिन उन्हें नेत्र नहीं खोले। जब बार बार सिंहासन देखने लगी तो विष्णु भगवान परेशान हो गए, लक्ष्मी जी परेशान हो गई, सिंहासन बार बार देख रही थी क्षीर सागर में। तो फिर एक बार भगवान विष्णु आए, बोले कर ले भाई राजन आज जो भी वरदान मांगने हो मांगे वरदान ले लो, और फिर ये मौका नहीं मिलेगा। इस बीच में राजा मनु ने अपने नेत्र खोल ले और चरण वंदना की। तो इन्हें सोची कौन सा हम वरदान मांगे, ये भी हमने विचार में नहीं बना पाओ। वो लेकर लाए ऐसा हमें पुत्र मिल जाए तो सबसे अति उत्तम है। तो मन में विचार किया, मुखारबंद से नहीं की राजा मनु ने कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, मन में विचार किया कि हमें विष्णु भगवान जैसा ऐसा पुत्र मिल जाए। तो विष्णु भगवान तो तीन लोग के नाथ थे, उन्हें सोची ऐसा पुत्र तो कहीं दूसरा हो ही नहीं सकती हमारे सभा, तो उसमें समय लगेगा। तो उन्हें की ठीक है वस्तु ऐसा ही होगा। तो उन्हें बताई भगवान विष्णु भगवान ने कि अभी तो जो है सत्ययुग चल रहा है, जब त्रेता आएगा त्रेता में आपको हम ये सब पुत्र मिलेगा। तो मतलब शांति धारा कही। इसके बाद माता शत्रुपा के पास पहुंची विष्णु भगवान, उन्हें देवी कहा है शत्रुपा से कि देवी वरदान मांग लो, क्या मांगना है। तो उन्हें सोची कौन सा वरदान मांगे, तो फिर उन्हें ये कहा कि जो पति ने वरदान मांगे हमें प्राण से अति प्यारे हैं। जबकि राजा रानी को भी पता नहीं था कौन वरदान ने मांगी क्या है, लेकिन उन्हें की अति उत्तम है और जो पति ने वरदान मांगे वे हमें प्राणों से प्यारे हैं। तो विष्णु भगवान बोले ठीक है अभी आप सतयुग चल रहा है, बैकुंठ पान करो, अमरावती स्थान दो आपका, अमरावती में बैकुंठ पान करो, जब त्रेता आएगा तो हम पुत्र के निमित्त में हम ही आएंगे आपके यहाँ और दूसरा कोई है ही नहीं, तो हम पुत्र के निमित्त में आपके यहाँ आएंगे। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है आप वैकुंठ पान करो, विष्णु भगवान अपने चले जाते हैं और ये नए अमरावती में अपना आसन जमा किया, मतलब वैकुंठ पान की गया। जब जो त्रेता योग आया तो त्रेता में राम बारह कला से भरे, भरत जी चार कला से भरे, मतलब इस तरीका से, और मतलब सीता जी आई। तो ये मतलब विष्णु भगवान का अवतार है राम। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग युग तो चार ही है, इन्हें चार में फेर बदल होता रहो समय समय पे। तो भगवान त्रेता में पुत्र के निमित्त में आए शत्रुपा, जो राजा मनु थे शत्रुपा थी यानी कि दशरथ और कौशल्या हो गई। इसके बाद जो कौशल्या है और वो जो है कौशल्या और दशरथ थी, फिर आने के जी जो है भाई यहाँ पे देवकी

0: वासुदेव, उन्हीं का अवतार है। और आज यह स्थिति है कि वो तो महान शक्ति है, थी महान शक्ति है और रहेंगी। जो पूर्व में है माता पार्वती है और शंकर भगवान है, उन्हीं का रूप कारसदेव का है। कारसदेव के रूप में शंकर जी हैं और जो हेलादी बहन है वो माता पार्वती है। तो फागे तो बहुत पुरानी है और लेकिन अब जाए कि एक तो कम समय है और समय के संगे जो है मतलब बहुत लंबी कथा है, इसलिए जो है इसका शॉर्ट में।
1: हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, आपने देखो कितना अच्छा वृत्तांत जो सुना दो। अब एक क्रम में आपसे हम जो भी जान बचा है कि आपने इसके अलावा और कौन रुचि लाइव कुछ
0: रुचि के लाने तो वैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम से हम जुड़े रहे और सांस्कृतिक कार्यक्रम में जैसे कहीं कीर्तन है, कहीं भजन है और कहीं मतलब गुट गायन है, कभी फाग सम्मेलन है, कभी किसान सम्मेलन है, तो कहीं ना कहीं तो जुड़े रहे। अच्छा इसी क्रम में जैसे मतलब कभी शंकर जी बनवा उतरे।
1: अच्छा
0: हाँ तो जैसे अभी एक माह शंकर जी बने अपने यहाँ घर पे और फिर अभी 14-15-16 तारीख में मतलब अपने 3 दिन कार्यक्रम चला। अच्छा। तो उसमें मतलब अखंड रामायण चली और फिर इसके बाद ओम नमः शिवाय को कीर्तन जी चलो और फिर गुट गायन भी चलो। तो अभी ये 14-15-16 तारीख में कार्यक्रम करे गए और मैं तो जी चाहता हूँ कि हर व्यक्ति इस कार्यक्रम से जुड़ा रहे, पुरानी परंपराएं लुप्त ना हो जाएं, इसका जीवित रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और ये करने से पाप क्षय होता है और आगे अगले पन के लिए जैसे अपन आज अपन जो भोजन करते हैं और आगे जो भोजन करेंगे उसकी व्यवस्था करते, इसी प्रकार से मनुष्योनी है। इस मनुष्योनी में अभी अपन कुछ कर सकते हैं, अगर पशु बनाता हो तो एक जगह बंधे बंधे क्या कर सकते हैं, मनुष्योनी में है तो कुछ भी कर सकते हैं। इस मनुष्योनी के लिए देवता तरसते हैं, मतलब
1: सही बात कह रहे हैं।
0: अगर देवता भी सामने आ जाए तो आदमी भय खा जाए, वो तो प्रेत आ जाए तो भय खा जाए। और मनुष्य बात कर सकता है, किसी भी व्यक्ति से बात कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, अभी मौका है कर लेना चाहिए। योग तो चार ही है, सत्ययुग द्वापर त्रेता कलयुग। तो इस कलयुग में भी एक राम नाम ऐसा है कि जिसका रटने से उद्धार हो जाता है,
1: नाम लेने से।
0: पहले यज्ञ करते थे सतयुग में तो उतना पुण्य होता था, आज जो राम का नाम लेने से मतलब कृतार्थ हो जाते हैं। तो शंकर जी बनत रहे और शंकर जी के संगे, शंकर जी को तो बहुत सीधे सच्चे देवता हैं शंकर जी। ओम नमः शिवाय का भजन करो और शंकर जी तो तीन लोग की नाथ है, साक्षात है, चाहे सत्य हो चाहे त्रेता हो चाहे द्वापर हो चाहे कलयुग हो, शंकर जी सभी योगों में। वो जो अमर है जैसे विष्णु भगवान को रूप बदल के राम को अवतार हो, राम को अवतार बदल के कृष्ण को अवतार हो, तो इनने तो थोड़ा परिवर्तन कर दो, लेकिन शंकर जी तो जागृता है,
1: शंकर जी ने परिवर्तन।
0: हाँ शंकर जी का जो ही है कि छोटो सा मंत्र है

0: नाम है शिवाय। अब गणपति जी की ये स्थिति है, गणपति जी के नाम अलग अलग रहेंगे अलग अलग समय में अवतार हुआ, जैसे विकट गणेश, बागतुन गणेश, मिसदंत गणेश, लंबोदय गणेश, भालचंद गणेश, हेरम्ब गणेश, कृष्णनामा गणेश, विकटनामा गणेश, गजानन गणेश, गढ़ाधिप गणेश। तो गणेश भी
1: अलग अलग
0: हैं, अलग अलग हैं सब,
1: नाम ही हैं।
0: नहीं, नाम है वो अलग अलग
1: अलग अलग।

0: अलग अलग
1: अलग अलग अवतार भी हैं, अलग अलग नाम भी हैं।
0: अच्छा,
1: सत्ययुग में कुछ नाम से हैं, त्रेता में कुछ नाम से हैं, द्वापर में किसी नाम से हैं, कलयुग में किसी नाम से हैं, गणपति जी भी है। तो जो आदि गणेश हैं वो गणेश आदि गणेश हैं। अब जो माता पार्वती जी ने अपने महल से तैयार करे थे गणेश, और जब माता पार्वती नहाने के लिए तैयार हुई तो पहरे पे गणेश जी का बैठा दो, तो एक डंडा लेके गणेश जी बैठ गए। बोले नहीं आई, यहाँ कोई नहीं आएगा। एक बार शंकर जी चल देते हैं, तो माता पार्वती के पास जाने लगे, तो उन्हें पता भी नहीं था कि शंकर जी ने कहा कि गणेश जी तैयार कर दे माता पार्वती ने अपने महल से। तो उन्हें भाई रोका, तुम कौन हो? अरे बाबा तुम कौन हो? अरे बोले हम शंकर जी, हमको पार्वती से मिलना है। अरे बोले नहीं नहीं, माता पार्वती अभी नहा रही, नहीं जा सकती। अरे बोले हमें मना कर रहे गणेश जी का शंकर जी ने। शंकर जी बोले नहीं, माता का आदेश से नहीं जा सकती आप अंदर। गणेश जी ने कहा, शंकर जी बोले मुझे कौन मना कर सकता है? अरे बोले मैं नहीं जाने दूंगा, माता का आदेश है। तो गणेश जी ने लेके डंडा ले दी, शंकर जी ने सिखा दो। अरे नहीं, जब ज्यादा घाल दे तो शंकर जी क्रोधित हो गए और जाके नंदीश्वर कहा बताई कि भाई जी देखो कौन कहां से अटपका है। और बोले कर ले मुझे तो कोई मालूम नहीं। तो गणेश जी के पास नंदीश्वर आए, शंकर जी की गण, बोले तुम कौन हो, कहां से यहां आ गए? अरे बोले माता का आदेश से नहीं जाए, कहीं नहीं जा सकती माता के पास। तो गणेश जी ने मतलब शंकर जी यहां परास्त करो और नंदीश्वर का परास्त करो, माता ना उतरी। अब जब क्रोधित हो गए शंकर जी ने उनका शीश काट दो, नाराजी में त्रिशूल से शीश काट दो। माता क्रोधित हो गई पार्वती, जब माता पार्वती क्रोधित हो गई तो सारे देवता इकट्ठे हो गए। तब जो है सब यही रखी कि माता किस बात में आप शांत हो गए? बोले हम गणेश का जीव देखना चाहते हैं। तो विष्णु भगवान जो है ऐरापत हाथी था कहीं, तो वहां से शीश ले आए थे कि जो पहला मतलब जो है जो भी जीव जंतु मिले उसका शीश लगाना है। तो ऐरापत हाथी को शीश ले आके गणेश जी लगाओ। वो तो आज गणेश जी की पास सूर है और गणेश जी मतलब वो गणेश जी गजानन गणेश हो गए।
0: अच्छा,
1: गजानन गणेश भाई मतलब तो प्रथम पूजगढ़ राज है जो व्यापक सर्वत्र वंदना उनको आपको स्वीकृत हो गणपत। तो गणेश जी की पहले वंदना है सभी देवताओं श्रेष्ठ गणेश जी, फिर वहां से हो गए। तो गणेश तो अब जैसे द्वादश शिव ज्योति लेंगे तो उनके स्थान अलग अलग हैं। एक स्थान तमिलनाडु में पड़ता है, तीन महाराष्ट्र में स्थान पड़ते हैं, एक उत्तराखंड में पड़ता है और एक झारखंड में पड़ता है, एक उज्जैन में महाकालेश्वर के नाम से होते हैं, और एक स्थान जो है वाराणसी में काशी बनारस में जो मतलब वहां विश्वेश्वर से इनके नाम से जाते। तो अलग नाम द्वादश शिव ज्योतिर्लिंग है। तो शंकर जी भी मतलब वैसे बहुत बड़ी शक्ति है, ना तो एक जगह इनके स्थान है, द्वादश शिव ज्योतिर्लिंग इतना समय है नहीं है आदमी के पास, उतना पैसा भी नहीं है कि इतना समय निकाल सके, इतना पैसा खर्चे। वैसे इस स्थान लेके हमने जो है पिताजी ने जगह जगह से उनकी बालू ले आए स्थान की, वहां का जल ले आया, वो पिताजी संग्रह करते रहे। फिर इसी तारम में और द्वादश शिव ज्योतिर्लिंग की रायपुरा में स्थापना करा दी, अपने हाथ से प्रतिमाएं तैयार करी और द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना करा दी। आज एक ही जगह रायपुरा में द्वादश शिव ज्योतिर्लिंग के दर्शन मिल जाते हैं।
0: चलो बहुत बहुत अच्छी बात, धन्यवाद आपको। आपने देखो इतना कीमती समय निकाल के अपन सब जन के बीच में अपनी बात रखी, अपनी जब बात बताई, इकलिया ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार भैया।
1: नमस्कार आपका भी, धन्यवाद।
0: हाँ सर, देखो दोस्तों जो अपन ने बात सुनी है भैया ज्ञान सिंह यादव जी से, और इनने कितनी अच्छी बात अपने आज के कार्यक्रम विधानमंडली में करी है। अब दोस्तों यही क्रम में आप और कह रही है कि माता दिन भैया ज्ञान सिंह भैया जी की बातन में लगे हैं और मनोरंजन की तरफ कोनो ध्यान नहीं कर रहे। सो दोस्तों मनोरंजन के लाने हमें ध्यान है, आओ सुना थे एक बढ़िया सी ठाकुर जी ये गा रहे हैं भूपेंद्र सिंह यादव जी।

झरुनाश्रे झरर पुल कड़के माता टीला जाऊं जजी कुल फुंदरू।

देखो दोस्तों, जब अपन ने फाक सुनी, फाक को आनंद लो, फाक को गा रहे थे भैया भूपेंद्र सिंह यादव जी। अब दोस्तों आज के कार्यक्रम पे था बुंदेली को इतने समापन होवे को समय हो गो है। सो अपने दोस्त माता दिन भैया खुद ही कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तपनी, फिर ये मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। तो दोस्तों आप सब जन को जे आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों आज की सभा इतना ही संपन्न होत है, सो चलत चलत आप उन्हें लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आप उन्हें ये फोन नंबर पे और ये पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सकें। दोस्तों हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतना समापन हो गए को समय हो गया है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।